शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं डॉक्टर प्रीति सिंह। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपसे बात करने वाले हैं उस शक्ति के बारे में जो बिना किसी दवा के और बिना ही किसी इलाज के एक दर्शन के द्वारा हमारे मन को गहराई से बदल सकती है, जिसको कहा जाता है ध्यान, जिसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में, सोशल मीडिया के दबाव में, पढ़ाई और नौकरी की चिंताएं, इन सब के बीच में मन को शांति कहाँ से मिले? क्या कुछ ही मिनट रोज ध्यान करके हम सच में ज्यादा शांत, सकारात्मक और संतुलित हो सकते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इस्कॉन से जुड़े हुए एक साधक जो भक्ति योग और मंत्र ध्यान का अभ्यास करते हैं। ये सिर्फ एक साधक ही नहीं है, ये एक पेशे से एक इंजीनियर है और इस्कॉन भक्ति शास्त्री के नाम से इनको जाना जाता है और जो कि TTC सर्टिफाइड भगवत गीता ट्रेनर भी हैं, जो कि शारदा यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़े हुए हैं। इन्होंने 13 साल वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम किया है, अलग अलग विभागों में, R&D डिपार्टमेंट्स में इन्होंने IT कंपनीज में काम किया है और पिछले 10 साल से इन्होंने वैल्यू बेस्ड सेशन और वर्कशॉप्स ली हैं। देश और विदेशों में इन्होंने यात्राएं की हैं और न्यूयॉर्क, USA, लंदन, कैलिफोर्निया, चाइना, ये कुछ ऐसे नाम मैं बता रही हूँ, ऐसे स्थान में बता रही हूँ जहाँ पे जाके इन्होंने भगवत गीता के प्रसार और प्रचार में अपना योगदान दिया है। बल्कि इसके अलावा ये बहुत सारे एकेडमिक कोर्सेज भी जो हैं ये डिलीवर करते हैं, जिसमें भगवत गीता, इमोशनल इंटेलिजेंस और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे इन्होंने बहुत सारी वर्कशॉप्स लगाई हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो आयोजित किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नाम है हमारे बीच में, जीव गोपाल दास जी, और जो हमें बताएंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र, जप माला और सरल साधना के जरिए कोई भी साधारण व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिकता, एकाग्रता और आनंद कैसे ला सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज का सफर ध्यान और भक्ति के रंगों के साथ में। जीव गोपाल दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनो शारदा में।
1: धन्यवाद मैम, आपके इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक बहुत अच्छा मंच है जो कि आप इतने सालों से बहुत सुंदर रूप से लेके चल रहे हैं। रियली थैंक यू सो मच फॉर दैट।
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमारा इनविटेशन जो है एक्सेप्ट करने के लिए। और मैं खुद बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, उत्सुक हूँ ये जानने के लिए, क्योंकि आप पेशे से एक इंजीनियर हैं, तो इंजीनियरिंग से आप कैसे भक्ति मार्ग में आप रमे, कैसे इस मार्ग पे आए और कैसे इस्कॉन का एक हिस्सा बन के आप गीता के प्रचार प्रसार में अपने आप को शामिल करने के बारे में सोचा?
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मैंने 13 साल इंडस्ट्री में जॉब किया, पूरी दुनिया में जाके आया, लेकिन एक प्रॉब्लम मैंने हर जगह देखी और वो थी हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो खुश नहीं है। मेरा सफर शुरू हुआ उस खुशी के पीछे भागने की। पेशे में तो मैं भागता रहा और अपने आप को एंजॉय किया, लेकिन जब उस खुशी की दौड़ में भागा तो मुझे एहसास हुआ कि पेशे से पूरी बात नहीं बनेगी, थोड़ी सी कमी है। उसको पूरा करने के लिए एक बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था है, जब हम कोई इच्छा करते हैं तो पूरी प्रकृति और भगवान सब मिल के हमारे लिए कार्य करने लग जाते हैं। और यहाँ पर मेरे हाथ में श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज मेरे हाथ में आई। और उसको, क्योंकि एज एन इंजीनियर मुझे रिसर्च में बहुत सारा पढ़ना पड़ता था, भगवद गीता पढ़ना शुरू किया इसी एटीट्यूड के साथ, स्क्रूटिनाइजिंगली, इसमें कुछ गलती हो सकती है, चलो पकड़ते हैं,
0: क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से।
1: एग्जैक्टली, गलती तो नहीं मिली लेकिन मेरे जीवन में एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया और इससे मैं भक्ति योग में जुड़ा।
0: किस तरह के परिवर्तन की बात कर रहे हैं आप?
1: जब हम देखते हैं भगवद गीता हमें बताती है कि आप इस संसार में जब भी जितनी भी खुशी, किसी भी वस्तु में जितनी खुशी को एंजॉय कर सकते हैं, वो वस्तु आने वाले समय में आपको उतना ही दुख प्रदान करने वाली। उदाहरण देखिए, आप मान लीजिए बहुत एक दो साल तक पैसा सेविंग करते हैं कि मुझे एक बड़ी कार खरीदनी है।
0: जी जी।
1: और आप खरीद के आ जाते हैं शोरूम के बाहर, निकलते हैं,
0: हाँ।
1: लेकिन जैसे ही आप शोरूम से बाहर निकलते हैं और कार को आप जैसे ही टर्न मारते हैं और रोड पे आते हैं, अचानक से लेट से रिक्शा वाले ने आके स्क्रैच मार के निकल गया। तो बताइए, वो स्क्रैच आपकी गाड़ी पे लगा या आपके दिल?
0: बिल्कुल दिल पे लगा।
1: इस गाड़ी में जितना सुख दिया
0: आपने, तो मुझे कुछ याद भी दिलवा दिया कि हम कहते हैं ना कि ओनली योर चाइल्ड हैज द कैपेसिटी टू हर्ट यू मोस्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि जितना प्यार हम अपने बच्चों से करते हैं, जितना ख्याल उनका रखते हैं, जितनी खुशी वो हमें देते हैं, तो क्या एक वक्त पे वो हमें सबसे ज्यादा दुख दे सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, और वो देते हैं।
0: अच्छा, हमने भी दिया है। जब हम बच्चे थे तो हम भी अपने जो है माता पिता को, पेरेंट्स को परेशान करते ही थे, तो दुख तो हमने भी दिया है। ये तो एक जनरेशनल प्रोसेस है जो आगे बढ़ रहा है।
1: यस, आप देखेंगे कि जिससे जितना लगाव है उससे जितना प्रेम मिलता है उससे उतना ही क्लेश भी मिलता है।
0: ओके,
1: राइट। ये केवल दूसरों की बात नहीं है, रिश्तों की बात नहीं है, स्वयं हमारा शरीर भी जितना सुख देता है वो जाते जाते उतना दुख भी दे के जाता है।
0: जी,
1: हमारा
0: जी।
1: मन जितना हमें सुख देता है उतना ही दुख भी जाता
0: दुख
1: है।
0: भी देकर।
1: बिकॉज इस संसार में एक कंसेप्ट है कि सुख के साथ दुख फ्री में मिलेगा, तो दो अपोजिट पोल्स के बीच में हमेशा हमें ट्रैवर्स करना पड़ता।
0: तो ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक पैकेज है जो कि साथ में ही आएगा।
1: लेकिन भगवद गीता हमें बताती है कि सुख और दुख के ऊपर भी एक ऐसी दुनिया है। जब सुख के पीछे भागते तो दुख मिल सकता है, लेकिन एक ऐसी दुनिया है जहाँ की अगर हम सुख के पीछे भागेंगे तो सुख बढ़ता चला जाए, और उसको कहते हैं वो एक एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि ये दो पोल्स के बीच में दुनिया नहीं चलती। जब सुख के पीछे भागते हैं तो बढ़ता जाता है, और उसको सुख नहीं बोलते, उसको आनंद कहते हैं।
0: आनंद कहते हैं।
1: इस आनंद की खोज हमने शुरू करी और ये बढ़ता चला गया।
0: तो किस प्रकार का आनंद है ये जीव गोपाल दास जिसकी आप बात कर रहे हैं? हम भी उस आनंद की अनुभूति करना चाहेंगे आपकी मौजूदगी के साथ में।
1: ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, और भगवद गीता बताती है कि ऐसे प्रश्न केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। अगर इसलिए आप सबके मन में भी यही प्रश्न है कि हम कैसे इस सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, इस आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको ABCDE फॉर्मूला देंगे। ए फॉर्मूला इस ऐसे लोगों के साथ पहले एसोसिएट कीजिए जो कि इस आनंद की खोज में हैं। क्योंकि अगर मैं देखूं तो क्रिकेट के मैदान में सचिन तेंदुलकर नहीं बनते अगर वो हॉकी के मैदान में जाकर क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं।
0: जी,
1: विच मीन्स कि उन्हें क्रिकेट के एक्सपर्ट्स का एसोसिएशन
0: चाहिए था,
1: और एक समय उन्हें चाहिए था, और एक ऐसा समय आया जब दूरी दुनिया उनके एसोसिएशन के पीछे दीवानी थी। सो एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: यानी जिन लोगों के साथ हम जुड़ते हैं, जिस स्थान पे हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमें बनाने में, हमारी पर्सनालिटी को एस्टैब्लिश करने में।
1: एग्जैक्टली आप देखिए कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया से दूर होना चाहता हूँ, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक और बताने आजकल कितने प्लेटफॉर्म्स आ गए, इनसे दूर होना चाहता हूँ परंतु ये दूर नहीं हो पाते। प्रयास करते हैं, हर साल रिजोल्यूशन लेते हैं कि अब नहीं करूंगा, ये आदतें मैं छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ पाएंगे जब तक कि ऐसे लोगों का एसोसिएशन नहीं लेंगे जो कि छोड़ चुके हैं या छोड़ने का सीरियस प्रयास
0: कर रहे हैं, या इस प्रकार के वातावरण में रहते ही नहीं है, उसका प्रयोग करते ही नहीं है।
1: एग्जैक्टली मैम।
0: तो देखिए, जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है हमारा, और इसके जो श्रोता है वो काफी हद तक एक छात्र कम्युनिटी भी है, स्टूडेंट कम्युनिटी भी है, तो खास तौर पे मैं उनको ध्यान में रखते हुए ये बात आपसे पूछ रही हूँ कि समय के साथ में कई बार हमारे वातावरण के भी प्रभाव में आके हमारे कुछ स्टूडेंट्स कुछ एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, तो उस एडिक्शन से बाहर निकलने का भक्ति साधना में क्या जरिया हो सका है?
1: आपका ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से भी ज्यादा स्पिरिचुअलाइज्ड क्वेश्चन है। इस प्रश्न के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, पर देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स तैयार हैं कि नहीं। सो फर्स्ट थिंग इज, अगर स्टूडेंट्स किसी भी तरह के एडिक्शन में फंसे हैं तो उन्हें सबसे पहली चीज ये सोचनी चाहिए थी क्या वे बदलना चाहते हैं। अगर उनके अंदर से प्रश्न आता है मैं बदलना चाहता हूँ, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। करने के लिए उन्हें ऐसे व्यक्तियों से एसोसिएशन लेना पड़ेगा जो कि अपने जीवन को बदल चुके हैं। मैं एक सुंदर सा उदाहरण देता हूँ। शिला प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, 1966 में वो न्यूयॉर्क पहुंचे, और न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद वो उनके गुरु ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया था कि जाकर आपको विदेशों में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है भगवद गीता और भागवत धर्म का। तो इसीलिए वे पहुंचे वहां पर, और वहां उन्होंने देखा कि समाज में कोई नियम ही नहीं है। एडिक्शन तो छोड़ दीजिए, एक्सट्रीम एडिक्शंस, ड्रग एडिक्शन, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कोई ऐसा एडिक्शन नहीं था जो वो करते थे।
0: जी।
1: नहीं करते थे, परंतु श्रील प्रभुपाद ने उनको एक चीज दी, जैसा हमने डिस्कस किया, एसोसिएशन, संघ प्रदान किया। किसका संघ दिया? श्रील प्रभुपाद भगवान के एक शुद्ध भक्त थे, और उन्होंने शुद्ध भक्त जब किसी व्यक्ति को संघ प्रदान करता है तो किस प्रकार से उनके जीवन में चेंज आया, आप देखिए। ऐसे लोग जो कि एडिक्शन से बाहर नहीं आना चाहते थे, कृष्ण का नाम जीवन में कभी सुना नहीं
2: जी,
1: लेकिन वे भक्ति योग को इतना सीरियसली प्रैक्टिस करने लगे कि सुबह 4 बजे उठते थे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, भगवद गीता पढ़ते ही नहीं थे, जाकर भगवद गीता को डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे ज्यादा से ज्यादा। दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। जिसने कृष्ण का नाम नहीं सुना, भगवद गीता कभी सुना नहीं है, वो भगवद गीता के डिस्ट्रीब्यूशन को कर।
0: बल्कि मेरा अपना एक पर्सनल जो है अनुभव कहिए, ऑब्जर्वेशन कहिए, कि हम जिस धर्म से जुड़े हुए हैं, हम जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ तो गीता हमारे जीवन का एक आधार है, है ना। लेकिन अगर हम विदेश की बात करें तो उनका जुड़ाव तो आप छोड़िए, कि आपने जैसे कहा कि उन्होंने कभी धर्म का नाम ही नहीं सुना था इस प्रकार का, तो उनका जो भक्ति भाव हम देखते हैं वो हमें बहुत इम्प्रेस करता है, कि कैसे एक इंसान एक डिफरेंट कल्चर से आकर उठकर दूसरे कल्चर में किस तरीके से अपने आप को जो है वो समाहित कर लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो असर आप बात कर रहे हैं, ये कैसे होता है, किस प्रकार से ये हम किसी व्यक्ति को जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं कि आप इस भक्ति भाव की तरफ जाएं, आप एडिक्शन से जो है बाहर निकलें, और क्या क्या जरिए हो सकते हैं इसको अपनाने के?
1: सबसे प्रमुख, मैम आपने बहुत अच्छा ये भी प्रश्न किया है, सबसे प्रमुख चीज जो व्यक्ति को जानना चाहिए, अपनी सही पहचान को
0: जी।
1: हमारी सही पहचान का अर्थ है कि क्या जो मैं रोज सुबह ब्रश करते हुए आईने में देखता हूँ,
0: हाँ,
1: क्या मैं यही हूँ? कहने का तात्पर्य ये है,
0: यानी हमारा क्या शरीर ये हमारा ही है या हम ही शरीर के ही हैं,
1: या मैं शरीर हूँ भी कि नहीं,
0: हूँ भी कि नहीं।
1: फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण की तरह देखिए, अगर ड्राइवर कहे कि मैं ही गाड़ी हूँ,
0: हाँ,
1: तो क्या ये सही होगा? तो ड्राइवर तो गाड़ी नहीं होता,
0: नहीं हो सकता।
1: गाड़ी केवल एक माध्यम है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए
0: जी।
1: इसी प्रकार से ये शरीर हम नहीं है, क्योंकि ये शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवत गीता हमें बताती है कि आप शरीर नहीं है, आप शरीर को चलाने वाले ड्राइवर अर्थात आत्मा है, और उस आत्मा की पहचान अगर आप सही से कर लेते हैं तो फिर आप केवल इस शरीर को जैसे चलाना चाहें, अपने मन और बुद्धि को जैसे चलाना चाहें, इसको चला सकते हैं। मन तब परेशान करता है जब आप सोचते हैं मैं मन हूँ। जब आप मन को बोलेंगे कि तुम्हारे साथ जो भी प्रॉब्लम है, तुम मैं नहीं हूँ, अर्थात मैं आत्मा हूँ और तुम मेरे मन हो, मैं मन नहीं हूँ, जब मन को स्वयं से अलग कर कर वो व्यक्ति देखने लगता है तो उसमें सुधार की गुंजाइश है। लेकिन किसी व्यक्ति को आप बोलेंगे कि आप सही नहीं है, तो उस व्यक्ति को ये प्रश्न पूछना चाहिए, सही क्या नहीं है? आप शरीर की बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, या बुद्धि की बात कर रहे हैं? कि आत्मा तो हमेशा सही है,
0: सही है बिल्कुल।
1: तो जब पता चला कि प्रॉब्लम तो मन में थी, मन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उस पे काम करते हैं। लेकिन वो मन मैं ही मान लूंगा ना, तो मेरा अहंकार इसे एक्सेप्ट करने के लिए मुझे मानने नहीं देगा, और मेरा अहंकार मुझसे कहेगा अरे मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। और यहाँ हम सुधार करने के लिए तैयार नहीं, कितना ही बुरा एडिक्शन हो हमारे जीवन में, लेकिन वो सुधारा जा सकता है अगर हम एक्सेप्ट करें कि वो प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं है, हमसे जुड़े एक एलिमेंट में, तत्व में है। गाड़ी में प्रॉब्लम है उसको सुधार सकते हैं, ड्राइवर में प्रॉब्लम है तो मुश्किल हो गया ना। इसलिए मन को अपने से अलग कर देख कर और फिर उस पर कार्य करें, बड़ा आसान।
0: तो ये जो आप कह रहे हैं कि शुरुआत करें अपने मन पे काम करने की, उस मन पे काम करने के लिए पहला स्टेप क्या हो सकता है?
1: मन को क्या अच्छा लगता है वो करिए, कितना आसान हो गया ना।
0: जो मन करे,
1: नहीं मन
0: जहाँ मन जाए, क्योंकि मन तो एक चंचल है। अक्सर हम कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, ये शब्द यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं इनका मन के लिए, तो उस चंचला को भी तो नियंत्रित करना जरूरी होता है।
1: आप अगर स्प्रिंग को दबाएंगे, एक साल तक दबाए रखेंगे, तब भी वो उछल के रिएक्ट करेगा। मन भी बेचारा ऐसा ही है, उसमें इसकी क्या गलती, उसकी प्रकृति ऐसी। मन में 3 चीजें होती है, थिंकिंग अर्थात सोचता है, फीलिंग अर्थात कुछ महसूस करता है, और इंटेंशनैलिटी यानी कि कुछ करने की उसमें प्रवृत्ति होती है। अब ऐसे में जो दूसरा मैंने पार्ट, मन के अंदर फीलिंग्स होती हैं, कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ महसूस करना चाहता है, जहां उसको अच्छा लगता है वो करता है ना। तो अगर हमें अपने मन को कंट्रोल में रखना है और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है। देखिए, दो चीजें मन एंजॉय करता है, एक तो या तो आध्यात्म में बढ़कर अपने आप को कंट्रोल कर लेगा
0: जी,
1: या फिर यू नो भौतिक विषयों में एडिक्शन में कहीं ना कहीं
0: फंस जाएगा। और भौतिक भी अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एडिक्शन, जो कहते हैं कि हर व्यक्ति एडिक्टेड है, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अल्कोहल एक एडिक्शन है या ड्रग्स एक एडिक्शन है। मुझे कई बार लगता है कि चाय भी एक एडिक्शन है, जो अब मेरे जैसे भारतीयों को बहुत विचलित करती है। बार बार किसी से बात करने की इच्छा होना, मन को खाली करना, वो भी एक एडिक्शन है। कुछ लोग नेगेटिव एनर्जी बहुत फैलाते हैं अपने आसपास, वो भी एक एडिक्शन है कि उनको उस तरह की बातें करने की आदत हो गई है। तो ये जो एडिक्शन है, जो खास तौर पे हम जिस पे बात कर रहे हैं, तो भक्ति मार्ग में उससे निकलने का क्या तरीका बताया गया? उस मन को नियंत्रित तो नहीं करने की बात कहूंगी मैं अब, क्योंकि आपने कहा जितना नियंत्रित करेंगे वो उतना बेकाबू होता चला जाएगा, तो उसको सही मार्ग पर लेकर आने का क्या तरीका हो सकता है?
1: वेरी नाइस क्वेश्चन मैम। अब अगर दूसरे स्टेप पे आगे बढ़े, कंट्रोल मत करिए, फोर्स मत करिए मन को। मन को जो अच्छा लगता है वो करते हैं ना।
0: हाँ।
1: तो हम लाइफ में अगर एनवायरनमेंट ऐसा रखें, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, सुबह वॉक पे जाना, सुबह जल्दी उठ के मेडिटेशन करना, अच्छा क्वालिटी का भोजन लेना, केवल जिह्वा की तृप्ति के लिए रोज पिज्जा बर्गर नहीं खाना। तो कहने का तात्पर्य, अगर अच्छी आदतों में भी मन को अच्छा लगने लगे तो करने लगेगा। तो मन को ये कन्विंस करना और उस ज्ञान के स्तर पर लाना कि अच्छी चीजें अच्छी,
0: तो यानी मन को भी हमें कन्विंस करना होगा, बच्चे की तरह समझाना होगा उसको कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये बुरा है,
1: उसके इमोशंस में अच्छी चीजों को भरना है। जैसे कि जब टंकी में पानी गंदा होता है, तो हम टंकी पूरी इतनी बड़ी यू नो टैंकर साफ करने तो नहीं जाते। हम क्या करते हैं,
0: फिल्टर लगा देते हैं।
1: हाँ। फिल्टर भी लगाते हैं और एक और चीज करते हैं, ऊपर से साफ पानी चालू करते हैं और नीचे से गंदे पानी को निकलने का रास्ता खुला छोड़ देते हैं। जैसे ही गंदा पानी निकलता जाता है, पानी साफ हो जाता है। कहने का तात्पर्य, अच्छे विचारों को, सात्विक विचारों को मन में आने दें, भगवद गीता के उत्तम विचारों को मन में आते रहने दें, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन में जगह तो उतनी है ना। जैसे अच्छे विचार अंदर आएंगे, जो पुराने विचार हैं, दुखित विचार हैं, धीरे धीरे बाहर होते जाएंगे। कुछ समय में आप देखेंगे मन में अच्छे विचार ज्यादा हैं और स्वयं अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते।
0: अक्सर कहा जाता है कि मेरा मन नहीं लगता है ना, और जैसे हमारे बॉलीवुड ने मन को बड़ा रोमांटिसाइज भी कर दिया है कि मेरा मन तुम्हारे बगैर नहीं लगता है, या मन जो है वो अकेले खुशी नहीं देता है, किसी और के साथ खुशी नहीं देता है। तो मन लगाने का क्या तरीका है भक्ति मार्ग में, मन को हम कैसे लगाते हैं और किस प्रकार से जो है वो, जैसे आप एक तरीका आपने सुझाया कि सुबह समय से उठें और मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करने के क्या तरीके हो सकते हैं, ये हमें कैसे अफेक्ट करता है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए।
1: इस पे दो प्रश्न मैं देख पा रहा हूँ। पहला ये कि मन को कैसे हम अध्यात्म में लगा सकते हैं
0: जी।
1: और बॉलीवुड ने जिस प्रकार से
0: हाँ।
1: मन को या दिल को
0: हाँ।
1: जिस प्रकार से रोमांटिसाइज किया है
0: हाँ।
1: उसी को यूज कर लेते हैं। जब किसी से प्रेम होता है यू
0: हाँ।
1: नो you know, आप देखिए बॉलीवुड में भी
0: हाँ।
1: या हॉलीवुड में भी
0: हाँ।
1: लव जो होता है, प्रेम होता है
0: जी।
1: वो वन साइडेड होता है, एक तरफा होता है,
0: एक तरफा है।
1: कहने का तात्पर्य है
0: हाँ।
1: कि उसे एक तरफा ही रखे ना, बट प्रॉब्लम।
0: लेकिन क्या एक तरफा जो प्रेम है, क्या वो पूर्ण प्रेम कहा जा सकता है? क्या वो फुल सर्कल है?
1: यस, वही पूर्ण है। यही मैं इस पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि एक तरफा लव ही, प्रेम ही जो है पूर्ण है
0: हाँ।
1: जब दो तरफा से हो जाता है
0: तो
1: उसमें स्वार्थ जुड़ जाता है। मैं कुछ आपके लिए करता हूँ, आप मुझे बदले में कुछ देंगे, ये तो बिजनेस हो गया,
0: ये बिजनेस हो गया।
1: प्रेम तो केवल एक तरफा ही होता है,
0: यानी अपेक्षा रखना जो है वो बिजनेस है।
1: एग्जैक्टली अभी हम भक्ति योग में यही करते हैं कि भगवान से कहते हैं, एक संस्कृत में चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है
0: जी।
1: उसकी छोटी सी पंक्ति ऐसी है
0: जी।
1: यथा तथा वा विदधा तुलं पटो मत प्राण नाथस्तु स एव नापरः। व्हाट इज द चैतन्य महाप्रभु सेज, महाप्रभु सेज कि देखिए भगवान, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ
0: हाँ।
1: मैं आपकी प्रेम से सेवा कर रहा हूँ, आप मेरे साथ कुछ भी करिए,
0: समर्पण,
1: आप कुछ भी करिए मेरे
0: जी,
1: साथ
0: जी,
1: कितने ही बुरे दिन दिखाइए, लेकिन ये मेरी परीक्षा है, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ, आप ही मेरे प्राणनाथ हैं
0: जी, जी।
1: जब हम ऐसा कह देंगे तो स्वार्थ से हम बाहर निकलने के लिए अपने आप को खोल देते हैं,
0: यानी प्रभु को समर्पित कर दें हम स्वयं को।
1: एक जगह प्रेम है और दूसरी तरफ काम है। बॉलीवुड में काम को प्रेम की तरह दिखाया जा रहा है, लेकिन

0: व्यक्ति ज्ञान में होता है वो इन दोनों को अलग अलग करके देख पाता है और वो शुद्ध प्रेम से बिना किसी स्वार्थ के भगवान की सेवा में लगा रहता है, उससे जो आनंद आता है वो बढ़ता जाता है। लेकिन अगर कामवश व्यक्ति किसी प्रेम में फंसा है, काम में फंसा है, तो थोड़े दिन के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसीलिए हम जब काम की भावना से किसी रिलेशनशिप में या मैरिज में या किसी भी रिलेशनशिप में जब घुसते हैं
1: जी,
0: तो उस रिलेशनशिप में बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन आता है।
1: इट डजंट लास्ट लॉन्ग।
0: यस। और जब निस्वार्थ सेवा में जाइए उस रिलेशनशिप में, वो पूरे जीवन आपके साथ जाए।
1: तो ऐसा कोई मार्ग, जैसे अक्सर हमने सुना है कि आपने कहा दो तरीके हो सकते हैं मन को जो है वो सही रास्ते पे लगाने के, एक मेडिटेशन हो सकता है अगर हम करें तो मन नियंत्रित रहेगा, दूसरा तरीका भक्ति मार्ग भी हो सकता है। तो क्या ये दो अलग अलग तरीके हैं, और हैं तो किस प्रकार से ये हमारे शरीर और मन पे काम करते हैं?
0: ओके, तो इसमें हम क्विकली अब अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भक्ति क्या अलग से करनी पड़ती है या हमारे अंदर है।
1: जी।
0: सो अगर शॉर्ट में बोले तो एक बच्चा माँ से बच्चे का क्या रिलेशन होता है, क्या रिश्ता है ये माँ और बच्चे का?
1: एक जुड़ाव है, एक ममता। हाँ,
0: ममता, ममता में प्रेम है।
1: जी जी।
0: तो ये प्रेम का बच्चे का और माँ का जो रिश्ता है,
1: जी जी,
0: इसमें जब माँ को बच्चे से प्रेम होता है तो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर बच्चे को सर्व करती है।
1: जी जी।
0: एक दिन ऐसा आता है जब बच्चा उसके पंख फैल जाते हैं, निकल जाते हैं और वो उड़ना चाहता है। माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं, जा तू उड़ और अपने जीवन में यू नो सक्सेस को, सफलता को प्राप्त कर। वो रोती है, अंदर ही अंदर रोती है, लेकिन वो निस्वार्थ होती है। ये माँ का प्रेम
1: बांधता नहीं है, यानी प्रेम कभी बांधता नहीं है हमें किसी रिश्ते में या फिर
0: दूसरे रिश्ते के बारे में सोचता है कि ये कितना अच्छा करेगा इस प्रेम में।
1: हाँ,
0: अपने स्वार्थ से बाहर निकल के व्यक्ति
1: निकल के सोच पाता है।
0: और यही भक्ति है। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है और हम भगवान का अंश है। जैसे की शरीर से माँ ने हमें जन्म दिया है, वैसी आत्मा रूप में इस आत्मा को भगवान ने जन्म दिया है। भगवान का अंश है ये आत्मा। तो उस एंगल से हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता हुआ? प्रेम का।
1: प्रेम का रिश्ता।
0: और प्रेम का रिश्ता है तो क्या करेंगे, हम उनकी सेवा करेंगे। शरीर समाप्त हो जाएगा एक दिन, लेकिन आत्मा हमेशा अमर है,
1: साथ में रहेगी।
0: तो बिल्कुल, हमारा इटर्नल शाश्वत रिश्ता है भगवान से प्रेम का। और यही अगर हम प्रेम भगवान से करते हैं तो भक्ति हमारे जीवन का अंश है, अलग से नहीं करनी है।
1: जी जी। और ये जो मार्ग है इस पे चलने में परिवार का, हमारे आसपास के घर का माहौल का कितना असर पड़ता है?
0: जैसे हमने कहा कि शरीर जो है बदलता रहता है, आत्मा का पिछले जन्म भी तो कोई घर था।
1: घर था।
0: अगर उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है
1: जी
0: भक्तियों को, इस जन्म में आकर उसको अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता तब भी वो फेवरेबल एनवायरनमेंट बना लेता है या उस फेवरेबल एनवायरनमेंट में चला जाता है। ये नेचुरल है हमारे साथ। अगर मुझे क्रिकेट खेलने की इच्छा तो अपने आप क्रिकेट के ग्राउंड में मिलूंगा मैं आपको। वैसे जिसका भक्ति योग, जिसने पहले भी पिछले जन्मों से भक्ति करी अभी पूर्ण नहीं हुई, पूर्ण करने के लिए वो अगले जन्म में भी वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के पहुंच जाएगा।
1: यानी कि अक्सर हम कहते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें लगता है कि शायद इनसे पहली बार नहीं मिले, मिलते ही जैसे आज आपसे मुझे मिलके ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे पहले भी मिली हूँ। तो ये एक हमारा रिश्ता होता है जो हम कभी पहले किसी और जन्म की जब हम बात करते हैं, या एक आप कहिए कि लाइक माइंडेड जो लोग होते हैं, लाइक माइंडेड जो पीपल होते हैं, तो उनका मन को एक दूसरे को आप पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं कि आप जो बात करें वो मेरी समझ में आ रही है और जो मैं पूछना चाह रही हूँ वो आप उस भाव को समझ पा रहे हैं। तो ये रिश्ता बहुत ज़रूरी है भक्ति मार्ग पे चलने के लिए। मैं जीव गोपाल दास जी एक ऐसी समस्या की बात करूँगी कि जो हमारा जो युवा वर्ग है खास तौर पर, वो बहुत जूझ रहा है समस्या से। और ये समस्या ऐसी है कि मुझे लगता है कि जिसमें शायद उनकी ज़्यादा गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जैसे कहा कि सोशल मीडिया का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उनको पोस्ट करना होता है, लाइक करना होता है, दोस्तों ने लाइक नहीं किया, या फिर रात भर जो है गेम खेलते हैं, सुबह पेरेंट्स जो हैं वो शिकायत करते हैं कि सुबह टाइम से नहीं उठते हैं, स्कूल में नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, एग्ज़ाम्स के समय पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और अल्टीमेटली ये जो सारी चीज़ें हैं उनको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं। तो क्या भक्ति मार्ग में ऐसा कोई रास्ता है जिसके द्वारा जो है वो अपने इस तनाव से बाहर निकल सकते हैं?
0: अभी हमने जैसे चर्चा किया कि भक्ति करनी नहीं होती,
1: हो जाती है,
0: हमारे अंदर
1: होती है।
0: जी। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए, उदाहरण देता हूँ कि एक मछली से कहा जाए कि आपको पेड़ पे चढ़ के कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आना है, और बंदर से कहा जाए कि पानी में आपको एक घंटे तैर कर फर्स्ट आना है, तो दोनों के लिए अननेचुरल है, अप्रकृतिक है, प्रकृति के उनके विरुद्ध है।
1: बिल्कुल हाँ।
0: सो भक्ति योग हमें ये बताता है कि आपकी जो प्रकृति है उसको कैसे हम भगवान की सेवा में लगा सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे आपने देखा मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था
1: जी।
0: अब 10-12-13 साल जॉब करने के बाद अगर मैं भक्ति में आता हूँ तो क्या मुझे अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए? डेफिनेटली यस। और इसी तरह से हम शारदा यूनिवर्सिटी में कुछ समय से एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं
1: जी,
0: और ये प्रोग्राम बड़ा सुंदर है
1: जी हाँ। और मैं खास तौर पे इस प्रोग्राम पे अभी आने ही वाली थी क्योंकि इसके बारे में भी हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि किस रंग में ये प्रोग्राम आप प्रस्तुत कर रहे हैं, किस तरीके से ये हमारे छात्रों को, हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को प्रभावित कर रहा है, और कुछ ऐसे उदाहरण अगर आंखों के सामने आप देख पाते हैं, कोई ऐसे एग्जांपल कि बच्चों के जीवन में कोई बदलाव आ रहा है इससे, तो वो मैं जानना चाहूंगी।
0: राइट मैम, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सो नेचुरली हमारी कुछ फीलिंग्स होती हैं, वो किसी ना किसी डायरेक्शन में इंक्लाइंड होती हैं। जैसे कि जैसे ही हमने यहाँ पर इन प्रोग्राम्स को शुरू किया, हम शुरू में कीर्तन करते हैं विद म्यूजिक एंड डांस, तो उसके साथ साथ म्यूजिक डांस के साथ जब हम इस कीर्तन को करते हैं तो अपने आप ही नेचुरली कुछ स्टूडेंट जिनको म्यूजिक अच्छा लगता है, जिनको डांस अच्छा लगता है, स्वयं अपने आगे आ गए, उन्हें कहा हम भी कीर्तन करना चाहेंगे। सो उनके अंदर वो उनका नेचर था, हमने उनको एक चैनलाइज किया
1: जी जी।
0: ऐसी कुछ स्टूडेंट्स आए बोले कि सर हम इंजीनियरिंग में हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर, हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा जो मैंने किया, मैंने इस प्रोफेशन से सीखा और मैं अभी उसी टैलेंट को सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ। हमारे आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशंस को भी जो है टेक्नोलॉजी में का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए, अर्थात ये टेक्नोलॉजी जो हमें दे सकती है वो हमें भी करना चाहिए
1: जी।
0: तो इस प्रकार से उन बच्चों ने कहा यस सर हम भी करना चाहेंगे, आप आइए इंटर्नशिप करिए हमारे साथ में और अच्छे से एक्सपोजर लीजिए। बच्चे बिल्कुल खुश हो गए, बोलते हैं यस सर हम करना चाहेंगे। उन्होंने अपना डिटेल्स दिया कि भाई आप ये रहा हमारा सीवी, आप प्लीज इसको परस्यू करिए। कुछ स्टूडेंट्स आए बोले सर मैं क्या कर सकता हूँ? हमने कहा आप क्या कर सकते हैं आप सोचिए, आपका नेचर क्या, आपकी प्रकृति क्या है, और आप भगवद्गीता में बताती कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है, अर्जुन के अंदर तीर चलाने का टैलेंट था उसको भगवान की सेवा में लगाया, वैसी आपके अंदर जो भी टैलेंट है अगर उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा पा रहे तो वो आपके बंधन का, इस संसार में बंधन का कारण बन सकता है। अगर पूर्ण रूप से मुक्त होना है तो जो कुछ भी आपके अंदर टैलेंट है उसको भगवान की सेवा में लगाइए। इसलिए स्टूडेंट से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये म्यूजिकल अवेकनिंग का जो प्रोग्राम है एवरी ट्यूजडे इवनिंग 4 PM शारदा यूनिवर्सिटी के टेम्पल में हॉल में होता है और वो आकर जरूर अटेंड करें। वहाँ आप अपने टैलेंट को फ्रीली कैसे आध्यात्मिक रूप से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। मंदिर केवल घंटी बजाने के लिए नहीं है, मंदिर वो है जो आपके अंदर के नेचर को बाहर निकाल कर लाए ताकि आप अंदर और बाहर दोनों तरफ सफाई से देख सके। So, ये हम
1: अध्यात्म हमें वो क्लैरिटी देता है कि हम अंदर और बाहर अच्छे से देख पाते हैं, डिफरेंस समझ पाते हैं।
0: हाँ, आप देखिए अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था लेकिन उसका टैलेंट जो था वो तीर चलाने में था और भगवान ने उससे कहा तुम्हारा टैलेंट है तीर चलाने का तो उसे ही भगवान की सेवा में लगाओ, अलग से जाकर कहीं योग और ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है
1: जी।
0: यही भक्ति योग,
1: यानी अगर हम अपने कर्म पे ध्यान दें, जैसे गीता में कहा गया है कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर, कर्म करते जाएं और भक्ति भाव से अपने कर्म को प्रभु को समर्पित कर दें, तो ये जो समर्पण की जो भावना अगर हमारे अंदर रहेगी तो ये स्वयं ही हमें भक्ति मार्ग पे ले जाएगी
0: जी।
1: और जो तनाव, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी जो हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है हम स्वयं ही इससे बाहर निकल पाएंगे।
0: यस मैम, बहुत सुंदर कहा। इसमें छोटी सी बात मैं जोड़ूंगा
1: जी
0: कि हमें किसी ना किसी को गुरु तो हम बना ही लेते हैं, या तो भगवत गीता को अपना गुरु बना लें या मन को गुरु बना लें।
1: मन को गुरु
0: बना, मन को बनाएंगे तो वो क्या करवा रहा है ये तो हमने देख लिया। एक बार भगवत गीता को गुरु बना के देखिए,
1: बना के देखिए। तो जो गुरु की जो एक कंसेप्ट हमारे धर्म में मौजूद है, हमारे पुराणों में मौजूद है, तो वो गुरु ही हमें जो है आगे लेके जाते हैं, हमारे सूत्रधार बनते हैं जीवन के।
0: यस, भगवत गीता 4th chapter में भगवान इसको कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनां तत्वदर्शिना, जिसने तत्व को देखा है वो आपको तत्व के बारे में बता सकता है। आपने बस तीन चीजें करनी है, जाके समर्पित करना है, दूसरा प्रश्न पूछना है, तीसरा थोड़ी सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव। और इसी की प्रैक्टिस हम यहाँ करते हैं।
1: बहुत सुंदर। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जितना आनंद मुझे, जैसे आनंद की अनुभूति मुझे हुई है इस कार्यक्रम को आप सबके सामने प्रस्तुत करते हुए, आप सबके बीच लेके आते हुए, उतनी आनंद की अनुभूति आपको सुनने में भी जरूर प्राप्त हुई होगी। तो अभी है हमारे साथ में जीव गोपाल दास जी, जो कि अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं और गीता दर्शन के लिए और इस्कॉन के प्रचार प्रसार के लिए, भक्ति मार्ग के लिए, और विभिन्न क्षेत्रों में हमारे जैसे आपके जैसे लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने समय निकाला और हमें, हमारे छात्रों के साथ में, हमारी कम्युनिटी, हमारे समुदाय के साथ में सुनो शारदा 90.8 FM पे हमारे बीच में ये कुछ अपने विचार साझा किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते रहेंगे दोबारा से। फिर से कोशिश करेंगे कि फिर से आपके विचारों को हम सुनो शारदा पे दोबारा से जो है प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद
0: इस प्लेटफॉर्म पर गीता के विचारों को व्यक्त करने का जो आपने मौका दिया, बहुत बहुत
1: धन्यवाद।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं, परंतु महासागर शांत रहता है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो।

हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो यह है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी को जीने की बातें करते हैं, खुश रहने वाली बातें हम आपके साथ साझा करते हैं और बहुत कुछ खास होता है इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन के माध्यम से। ये सारी बातें जन जन तक हम पहुंचा रहे होते हैं। तो 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आपको अपने शहर ग्रेटर नोएडा का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कैसा लगता है। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर बता सकते हैं। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है जब हमारे साथ हमारे टीचर जुड़ जाते हैं, वो टीचर जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें तराश रहे होते हैं, हमें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी बातें वो हमसे साझा कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं। पढ़ने पढ़ाने की जो बातें वो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि BGMC की पास आउट स्टूडेंट हमारे साथ आज जुड़ रही हैं और उनका जो नाम है वो है प्रियंवदा। 2016 में इन्होंने यहाँ से कोर्स किया जिसका नाम है BGMC। तो प्रियंवदा, आपका फाइनली सुनो शारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू सो मच सर।
2: कैसा फील कर रहे हैं, काफी टाइम के बाद आप अपने कैंपस में आए हैं और अपने स्कूल में आए हैं, अपने टीचर से आप मिल रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं?
3: सर, स्कूल वापस आके तो अच्छा लगता ही है टू मीट ऑल द ओल्ड टीचर्स हु बीन देयर। कुछ टीचर्स तो आई थिंक हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम हियर एंड बाकी जो टीचर्स यहाँ पे, आई ऑलवेज हैड अ वेरी स्पेशल रिलेशन विद ऑल ऑफ देम एंड आई यूज टू वर्क अ लॉट। प्रैक्टिकली 3 साल मैंने फैकल्टी रूम से ही अपनी पढ़ाई की।
2: ओह ग्रेट,
3: बिकॉज वहाँ पे आई यूज टू बी द एडिटर फॉर द न्यूज़पेपर आल्सो शार्डन्स की।
2: एक्सीलेंट,
3: तो मैं प्रैक्टिकली वहीं पे रहती थी।
2: मुझे यूं है कि मैं बहुत चक्का क्यों रह गया, इसके पीछे एक वजह है कि मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि उनको पता ही नहीं होता कि फैकल्टी रूम कहाँ है। मतलब आपने वहाँ अपनी कुर्सी जमा ली और लोगों से मिलते रहे, बात करते रहे, तो क्या क्या सीखा उस दौरान आपने?
3: सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई लर्नड वाज द कमिटमेंट टुवर्ड्स योर वर्क, कि कुछ भी हो, जो भी काम हो, 100% वही उसी को करना है विद फुल फोकस एंड लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। यहाँ पे टीचर्स आर वेरी वेलकमिंग फॉर स्टूडेंट्स टू मेक मिस्टेक्स एंड टू लर्न फ्रॉम इट, बिकॉज वो आई थिंक सबसे बड़ी सीख होती है। अगर अपनी मिस्टेक्स से आप खुद सीख के आगे बढ़ो, तो जो 3 साल मैंने यहाँ पे अपना सीखा है, वो माय टीचर्स हैव बीन माय कांस्टेंट सपोर्ट। इनफैक्ट ऑल माय टीचर्स, स्पेशली एक अभिषेक सर थे, अशरफ सर थे, इन्होंने ही मेरे को पुश किया था यहाँ से बॉम्बे जाने के लिए।
2: ग्रेट, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा?
3: उनके साथ सर सीखने को बहुत मिलता था। इनकी क्लासरूम ऐसे क्लासरूम नहीं लगती थी, इट यूज्ड टू बी मोर लाइक सिटिंग, टॉकिंग टू हिम, वर्किंग विद हिम। वो साथ में काम करते थे बच्चों के साथ एंड लाइक वहाँ से उससे सीख बहुत अच्छी मिलती थी। टू एक इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर जो क्लासरूम में होता है, तो लाइक आई थिंक फॉर मी वो बहुत अच्छा सीखने का एक्सपीरियंस था।
2: अभिषेक सर से तो फोन पे बातचीत हो जाती है?
3: हाँ, अभिषेक सर से भी आई हैव बीन इन कॉन्टैक्ट उनके साथ, पर वो थोड़ा सा वो मतलब आप वो बहुत पुश करते हैं स्टूडेंट्स को टू द पॉइंट कि अगर उनको पता है कि व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, वो कितना आगे जा सकता है, तो उनसे तो प्रैक्टिकली हमेशा डांट ही पड़ती रहती है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो।
2: अच्छा, प्रेमदा मुझे ये बताइए कि ये जो बहुत कुछ आपने सीखा अपने टीचर से, अपने कुलीग से, अपने दोस्तों से, मुंबई जब आप गए तो कितना काम आया? आपको लगा कि अगर काश मैं वहाँ ये सारी चीजें मिस कर देती तो मैं यहाँ जीरो से स्टार्ट करती। जो आपने सीखा यहाँ शारदा यूनिवर्सिटी से अपने टीचर से, कितना काम आया?
3: सब बहुत काम आया। इनफैक्ट मैं यहाँ पे जब मेरे को सेकंड ईयर में शारदन्स का एडिटर बनने का मौका मिला था सेकंड ईयर से, सो मैं 2 ईयर्स आई वॉज द एडिटर हियर। मेरे को एक तो टाइमलाइन, हाउ टू वर्क विद इन अ टाइम लिमिट एंड स्टार्टिंग जब मैंने एडिटर से की थी तो वहाँ पे भी मैंने स्टार्ट एज अ राइटर किया था एंड आई रोट स्क्रिप्ट्स फॉर टीवी शोज, फिक्शन, नॉन फिक्शन टीवी शोज एंड फिर मैं जब क्रिएटिव फील्ड में गई तो एक सर वो जो फाउंडेशन यहाँ बनी थी
2: वो वहाँ काम आया,
3: वो बहुत वहाँ काम आया। इनफैक्ट उसी पे बिल्ड हुआ है मेरा करियर।
2: एक्सीलेंट, ये आंसर में इसलिए जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास कुछ इंटर्न्स आते हैं, बहुत कैजुअली ले लेते हैं कि हम यहाँ से पास आउट हैं, इतने फैमिलियर हो चुके होते हैं कि वो उस चीज को सीखना या समझना नहीं चाहते। आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि बातें अभी शुरू हुई हैं, लेकिन इस मैसेज को मैं अभी इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इस बात का संबंध आपकी बात से संबंध है। तो क्या उनको कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ सीखे, किस तरीके से अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं, क्या एक मैसेज होगा?
3: मैं अगर वो मैसेज बताऊं सर, इट इज एक्चुअली कि शारदा में यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। आपको जिस डायरेक्शन में सीखना है, जो सीखना है, टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव हियर, एंड टू द फैक्ट कि आप स्टार्ट करके यू कैन बिल्ड योर फाउंडेशन,
2: राइट,
3: कि आगे व्हेन यू गो इन द वर्ल्ड यू कंटिन्यू योर करियर, इट रियली हेल्प्स, एंड यू कैन फॉल बैक टू योर फाउंडेशन एनी टाइम। वापस आके यू कैन रीलर्न एवरीथिंग फ्रॉम दीज टीचर्स, दे आर दैट ओपन टू यू एज अ स्टूडेंट। एज अ पास आउट, आई हैव पास्ड आउट इन 2016, बट टू स्टार्ट लर्निंग, बट टू कम बैक टू द रूट्स एंड जस्ट टॉक टू द टीचर्स एंड लर्न, आई थिंक दिस इज द थिंग, क्योंकि लर्निंग आई फील देर इज नो एज टू।
2: बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, जब चाहे आप सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और अगर मैं समझता हूँ कि कहते हैं ना कि बुनियाद अगर आपकी मजबूत होगी तो उस पर आप इमारत को खड़ा कर सकते हैं, और आपकी बेशक इसमें कोई शक वाली बात है नहीं कि आपकी जो नींव मजबूत रही अपने टीचर्स के सानिध्य में, आपने बहुत कुछ नाम कमाया है, कमा रही है। सो लिसनर्स, मैं बताना चाहूंगा, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रोड्यूसर हैं आप, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं आप, हैं प्रेम वदा। तो प्रेम वदा के साथ बहुत सारी बातें हो रही हैं, ये परिचय मैं इसलिए बताना भूल गया, लगा अरे नहीं आप नहीं तो स्टूडेंट है। प्रेम वदा, यहां पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और आपके साथ जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं हूं गगन आपके साथ, मेरे साथ हैं प्रेम वदा जो कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर हैं। सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 FM। मीडिया क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है और कहा जाता है कि ये मजबूत स्तंभ है, और यहाँ स्टूडेंट आते हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि शारदा विश्वविद्यालय आपके लिए बाहें पसारे इंतजार कर रहा है। यहाँ का जो मास्कॉम है, यहाँ का जो स्कूल है, बहुत सारे स्कूल में यू कहें कि स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और इसके बाद कहीं ना कहीं विदेश में, मुंबई में अपना योगदान दे रहे होते हैं। जैसे कि प्रेमवदा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि 2016 में यहाँ से पास आउट रही हैं। बीजीएमसी का कोर्स इन्होंने किया, इसके बाद मुंबई का सफर रहा, और उसके बाद जो मैं अभी थोड़ा ऑफ एयर मेरी आपसे बात हो रही थी, 2019 का रुख किया आपने विदेश की तरफ। ये फर्दर स्टडी के लिए आपको जाना हुआ या कुछ प्रोजेक्ट की वजह से जाना हुआ उधर?
1: 2019 में मैं गई थी जर्मनी फॉर अ वन ईयर कोर्स इन फिल्म मेकिंग। मैंने अपना मास्टर्स इन फिल्म मेकिंग किया है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स को एज अ स्पेशलाइजेशन लेके। सो एक साल का मेरा कोर्स था वहाँ पे, मेट फिल्म स्कूल करके एक फिल्म स्कूल है बर्लिन में, एंड वहाँ से आई हैव डन माय वन ईयर ऑफ मास्टर्स।
0: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ का कल्चर और वहाँ के कल्चर में कितना जमीन आसमान का फर्क महसूस करते हैं, किस तरीके से पढ़ाई होती है, प्रैक्टिकल पे जोर ज्यादा दिया जाता है या थ्योरी पढ़ाई जाती है?
1: वहाँ पे प्रैक्टिकल पे बहुत फोकस रहता है। इनफैक्ट एज अ फिल्म स्टूडेंट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फिल्म एज अ ऑडियंस ना देख के, एज अ स्टूडेंट देख के उस पर क्या अपनी क्रिटिक आप दे सकते हो, वो आपकी थॉट बिल्डिंग करवाते हैं वहाँ पे। कि एक फिल्म को अगर आप देख रहे हो नॉट एज एन ऑडियंस बट एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्टूडेंट, तो टेक्निकलिटीज पहचानने का और डिफ्रेंशिएट करने का आप में वो टैलेंट एंड वो स्किल वो लोग डिवेलप वहाँ पे बहुत कराते हैं।
0: ग्रेट। उसके बाद फिर जो आप जर्नी रही, वो कैसी जर्नी रही वहाँ, मतलब आपने कुछ प्रैक्टिकल वहीं किए, वहीं काम किया, या उसके बाद बैक टू पवेलियन या हिंदुस्तान आना हुआ?
1: जब मैं बर्लिन में थी, इन 6 months into my course, वहाँ पे तो लॉकडाउन लग गया था बिकॉज ऑफ द कोविड लॉकडाउन। तो फर्स्ट लॉकडाउन वाज वहाँ पे नोबडी न्यू कि क्या है, कैसे है, क्लासेस कैसे होंगी, क्या होगा। सो कपल ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे मिलके, इनफैक्ट मेरा एक सीनियर है यहीं शारदा का, वो भी वहाँ पे था, हम दोनों ने मिलके एक फिल्म बनाई। एंड प्रैक्टिकल वी थॉट कि जो हमने अभी तक सीखा है 6 महीने में उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। सो स्कूल से वहाँ पे भी बहुत सपोर्ट मिला इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट वहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ स्टूडियो, इन टर्म्स ऑफ वहाँ पे टीचर्स से डिस्कस करना उतनी नॉलेज वो कि हम ये फिल्म शूट करना चाहते हैं। सो वो सारा लेके वी मेड एक्सपेरिमेंटेड विद अ शॉर्ट फिल्म, 3 मिनट की फिल्म है, इट इज ऑन लाइक 1 take में हमने पूरी शूट करी है, एंड इट इज कॉल्ड कोल मीट। वो लेके भी टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव, जब हमने फिल्म उनको प्रेजेंट करी तो उन्हीं का आइडिया था कि अब इस फिल्म को लेके तुम थोड़ा फिल्म मार्केट एक्सप्लोर करो और सीखो। तो वो भी वहाँ पे बैठ के किया था कि हम लोग ने फिल्म फेस्टिवल्स में ये फिल्म डाली, फिर सीखा कि कौन सी मार्केट में कैसी फिल्म चलती है, क्या होता है।
0: तो किस लेवल पर वो फिल्म गई आपकी?
1: वो फिल्म US में हैज वन अवार्ड्स एज बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, एंड आई वाज नॉमिनेटेड फॉर प्रोड्यूसर आल्सो इंडी फिल्म फेस्टिवल्स में इन लॉस एंजेलिस। इंडिया में भी 2 फिल्म फेस्टिवल्स, ग्लोबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और गोवा फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म हैज been selected and has won award.
0: Oh, great. बधाई हो। आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं, बहुत सादगी से बातें अपनी रख रहे हैं, अदरवाइज तो लोग ये कहते हैं कि आसमान में उड़ रहे होते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी बातें हमसे शेयर कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा या इसके आसपास की मैं बात करूँ, इस एरिया में दिल्ली NCR में भी फिल्म फेस्टिवल्स होते रहते हैं, जैसे कि शारदा यूनिवर्सिटी में भी अभी KFF कुछ फिल्म फेस्टिवल हुआ था। ग्रेटर नोएडा के अलावा मैं बात करूँ, नोएडा में भी फिल्म फेस्टिवल हैं और आने वाले समय में यहाँ फिल्म सिटी आ रही है। तो क्या कभी कोई यहाँ अपनी फिल्म को लेकर आप आगे गए, एक बात, और दूसरी बात क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ जो फिल्म सिटी आ रही है कितना स्कोप होगा स्टूडेंट्स के लिए? 2 बातें।
1: सर, ये फिल्म तो अभी फेस्टिवल सर्किट में चल ही रही है, मैंने इसका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, क्योंकि माय एम वाज टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल फिल्म मार्केट। इंडिया का तो लाइक बीइंग एन इंडियन एंड बीइंग अ स्टूडेंट हियर वर्किंग इन बॉम्बे, थोड़ा बहुत आइडिया तो अंडरस्टैंडिंग फिल्म मार्केट की थी, बट बाहर का अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए दिस फिल्म पर्पस वाज दैट। अब आफ्टर द फिल्म फेस्टिवल सर्किट नेक्स्ट ईयर फिर ये फिल्म हम लोग यहाँ पे नोएडा दिल्ली में थोड़ा उसको वो करेंगे
0: एक्सप्लोर करेंगे
1: एंड इन टर्म्स ऑफ अगर यहाँ पे फिल्म सिटी आ रही है फॉर स्टूडेंट्स आई थिंक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू लर्न द बेसिकली प्रोडक्शन फिल्म प्रोडक्शन जो हम पेपर पे सीखते हैं और जो हम फिल्म सेट पे सीखते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है. एक फिल्म एटिकेट होती है जो सेट पे
0: राइट
1: एज अ प्रोफेशनल जब आप स्टेप इन करते हो फिल्म सेट पे वो आई थिंक क्लासरूम के बियॉन्ड एक लर्निंग है.
0: बिल्कुल सही कहा.
1: वो आप यहाँ पे ऑन पेपर विद टीचर्स जितना सीख सकते हो बट व्हेन यू स्टेप इनटू दैट फिल्म

0: set when you step into a like in a professional field. Wo I think students will get a better understanding jab yahan pe film city ban jayegi. It will be a great opportunity. To matlab sabko Bombay nahi bhagna padega.
1: Delhi NCR mein bahut acha scope rahega students ke liye jo yahan se pad rahe hain, yahan se pass out ho rahe hain. Abhi aapne ek bahut achi baat chhed di hai Premvada ki ek acha platform milta hai jab aap field mein utarte hain, maidan mein utarte hain, director ke sath kaam kar rahe hote hain, assistant director hote hain ya kuch aur. उस समय बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं कि नो डाउट जैसे आपने खुद कहा कि मैं यहाँ से सीख कर गई थी तो मुंबई में मुझे वो सारी चीज़ें काम आई. कुछ लोग तो जाहिर सी बात है कि अपने समय को ख़राब कर रहे होते हैं, 3 साल या 4 साल व्हाटएवर जो भी है, उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि मुझे पका पकाया मिल जाए. एक तो धैर्य की कमी होती है, दूसरा ये भी होता है कि वो सुनना पसंद नहीं करते. अगर टीचर, जाहिर सी बात है टीचर के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट सुनना नहीं चाहते, फिर वो डायरेक्टर की या असिस्टेंट डायरेक्टर की कैसे सुनेंगे अगर वो सारी चीज़ें यूँ कहें कि जो आप एटिकेट्स की बात कर रहे हैं, तमीज़ की बात कर रहे हैं, अगर किसी विद्यार्थी में वो सारी चीज़ें हैं, सुनने की क्षमता है, सीखना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेगा. और जिस विद्यार्थी के पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं क्या कहना चाहेंगे?
0: अभी भी टाइम है सीखने को,
1: सीखने को.
0: बट वहाँ पे जाके आपको कोई दोबारा अगर आपने गलती करी कोई बैठ के समझाएगा
1: नहीं, समझाएगा राइट.
0: ये एक चीज है, वहाँ पे अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी विद वन
1: किसी mistake, को मतलब नहीं है आपसे राइट.
0: तो फिर वो आगे बढ़ जाएंगे, आप अपनी मिस्टेक जहाँ तक आप जब तक रियलाइज करोगे फिर टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन वो थोड़ा एक डिफिकल्ट हो जाता है.
1: क्या कहना चाहेंगे शारदा यूनिवर्सिटी में अपने स्कूल में काफी समय के बाद आप आए हैं, रेडियो स्टेशन उस वक्त आपका आपके सामने बन रहा था और आज आप रेडियो स्टेशन में हैं एक और आपका एक साक्षात्कार मैं कर रहा हूँ. सो कैसा फील करते हैं अपनी कॉलेज में आकर, रेडियो स्टेशन में आकर, क्या कहना चाहेंगे फाइनली?
0: एक्चुअली सर आई फील वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड कि जहाँ पे मतलब व्हेन हम लोग थे तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना एम्फेसिस ऑन अ फिल्म स्कूल, ऑन मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट नहीं था. एंड नाउ अब आके देख रही हूँ कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हो गई हैं. सो आई फील लाइक कि एज स्टूडेंट्स वी मिस्ड आउट ऑन दैट. हम लोगों को हर चीज के लिए वी वर लाइक के अपने से वो करते थे
1: जी जी.
0: बट नाउ यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज देख के फॉर स्टूडेंट्स आई फील रियली हैप्पी एंड रियली प्राउड.
1: रियली नाइस. सो मैं भी यही कहूंगा आपकी बात का एक निष्कर्ष निकालते हुए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस अवसर का उनको फायदा उठाना चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए. क्योंकि अगर आप मुंबई जाना चाहते हैं या फ्रीलांस अपना कुछ काम करना चाहते हैं, जो सीखने का मौका आपको मिल रहा है जिंदगी शायद वो दोबारा आपको सीखने का मौका ना दे. और अगर आप किसी डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं तो धैर्य, पेशेंस होना बहुत जरूरी है. पैशन के साथ आपने उस पेशेंस को जब आप कैरी करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट जो आएगा, परिणाम जो आएगा वो सुखद आएगा. सो प्रेमवदा मुझे आपसे बात करके वाकई बेहद खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा. और खास बात ये अच्छी लगी कि जो आपने कहा वो मैंने पाया आपकी सादगी में. और मैं आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत दुआएं करता हूँ और सब कुछ अच्छा हो, बेहतर हो, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं.
0: थैंक यू सो मच सर.
1: सो लिसनर्स, आप थे हमारे साथ प्रेमवदा जो कि एक प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं. ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर. इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं. सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरू शारदा 90.8fm. मैं हूं गगन, मुझे दीजिए अनुमति. जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ गुजारते चले जाइए. ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत. टाटा बाय बाय, टेक केयर.
2: प्ले, क्या बात है.

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग, तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क जाँच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा।
0: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
1: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करी नी। जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
2: और आसपास कहूं भी टायर नरी

0: बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़क जा मच्छर बन पर भारी।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
2: राहे मोहब्बत में कुछ कड़ियां ऐसी होती है जो जुड़ने पर ही समझ में आती है। मुझे तुम्हारा आज भी इंतजार है और मुझे यकीन है कि तुम जरूर आओगी।

0: कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया।
1: मुझे भी तो मेहंदी लगा दे। देख लो, 2 महीने के इलाज में इतना सुधार है तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है।
2: टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है। इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया।
1: ये क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी?
2: तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी। जानती हो ना, अधूरा इलाज यानी टीबी लाइलाज।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
2: भाभी कल ही डॉट सेंटर चली जाना।
1: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: दिल की फीलिंग्स।
1: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयाँ लेने पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है।

के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से उसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। यहाँ हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में आते रहते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नई है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं है, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है और कहीं कोई WhatsApp पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ है हमारी अपनी टीकन देवी जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती है और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक माँ की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो हमारा विषय है इस पर जागरूकता बेहद जरूरी है और मैं तो यही कहूंगी कि किसी भी नई दवाई या तकनीक या सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर के बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आज हम HPV वैक्सीन पर चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है, उनके भविष्य की चिंता होती है, उनके शरीर की चिंता होती है। पर यहाँ दिक्कत यह है कि लोग अपने घरों में डर का माहौल बना लेते हैं और डर को पकड़कर बैठ जाते हैं या किसी भी अफवाह पर विश्वास कर लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, क्या सही है, इन सभी बातों के बीच एक सच छिपा रह जाता है। आज हम उसी सच को बाहर लाएंगे। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। हम स्मार्ट के साथ मिलकर एक कार्यक्रम चला रहे हैं सेहत सही लाभ कही, जिसमें आज हम ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो डर और चिंता का विषय बना हुआ है। हम चाहते हैं कि हम अपने श्रोताओं को जागरूक करें क्योंकि हमारे रेडियो स्टेशन का यही उद्देश्य है कि हम समुदाय को अवेयर करें और उन तक सबसे जरूरी और अहम जानकारी पहुंचाएं।
0: बिल्कुल सही कहा टीकन देवी जी आपने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है, माँ थकी हुई है लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुन कर जमा हुई है, उस घर में आपको ले चलता हूँ।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उनके घर के भीतर।
2: अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई हैं। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई और बस यह कागज पकड़ा कर चली गई ट्यूशन के लिए।
1: हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। यह कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी, तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश के जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं हो पाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही तुमसे बात कर लूं और इस विषय के बारे में तुम्हें थोड़ा बता दूं।
2: अरे भाभी, यह HPV या जो भी नाम दिया है इसका, एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से ना जाने कितने तो मरीज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं, तो कोई कह रहा है सरकारी टीका है लगवा दो, कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या सर हो। अब तो बैठते इतनी चिंता होती है, कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं, कोई कह रहा है बांझ हो जाएंगी बेटियां, किसकी सुनूं, यहां तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा।
1: और तुमने वीडियो देखा है क्या?
2: देखा, सफेद कोट पहने एक औरत बोल रही थी, मेरे क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए, अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़ी हैं।
0: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है, जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में से है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट एचपीवी वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है। ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
2: टीकन भाभी, एक बात कहूँ, हमारे यहाँ जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, यह भी मन में आता है। ऊपर से यह सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब 1 बोल रहे हैं, कोई कह रहा है ये जल्दबाजी है।
1: देखो सुनीता, तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, जागरूकता भी होनी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना भी बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब तो क्वाड्रीवेलेंट एचपीवी वैक्सीन दी जा रही है, उसकी एक ही डोज प्रभावी मानी गई है, यानी उसके अलावा कोई डोज लेने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई हवा में नहीं फैलती है, दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद यह नीति बनी है। और यह वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इसको निगरानी के बाद ही सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है। यानी एचपीवी वैक्सीन के बारे में सही जानकारी बेहद जरूरी है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है और इसकी एक डोज ही प्रभावी है, यही हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं।
2: देखो ना, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी को आगे चलकर शादी ब्याह बच्चा होने में कहीं दिक्कत ना हो जाए।
1: ये सब सिर्फ अफवाह है जो ज्यादा फैल रही हैं। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेश में साफ लिखा है, एचपीवी वैक्सीन से बाझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली है उनकी भी गवाही है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली तो कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वह माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका कोई आधार नहीं है, वो सिर्फ एक भ्रांति है।
0: बिल्कुल सही कहा टीकन देवी जी आपने, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है और यही सेहत सही लाभ कई की ताकत है। मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
2: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में, लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
1: देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, एचपीवी वैक्सीन मासिक धर्म को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी यह सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात बिल्कुल मिथ है, अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक सामग्री सभी एक ही बात कह रहे हैं तो फिर हम सोशल मीडिया की बात क्यों माने, क्योंकि सोशल मीडिया पर खबरें बहुत जल्दी भ्रामक और गलत फैलाई जाती हैं।
2: इसीलिए सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे समझ में आता है।
1: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है और सच धीरे धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जिससे उसे रोका जा सकता है?
0: टीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। एचपीवी संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
2: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है।
1: हाँ सुनीता जी, ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी भी, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज, लेकिन यह वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी कि बिल्कुल मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों के साथ बार बार कहा गया है कि सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
2: मुफ्त? सच में?
1: हाँ बिल्कुल, ये बात सच है। आप सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जहां व्यवस्था हो वहां यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करके अपॉइंटमेंट की जानकारी भी ले सकते हैं। मगर यदि सब समझ में ना आए तो आप सीधा नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चले जाएं, किसी आयुष्मान आरोग्य मंदिर PHC, CHC या जिला अस्पताल में पूछ लें। डॉक्टरों से पूछें, ANM से पूछें, आशाओं से पूछें, जो भी आपको जानकारी लेनी है।
2: सुनने में आसान लगता है पर घर वाले भी तो माने, कहीं सास कुछ ना कहे, कोई पड़ोसन ना कुछ कहे, फिर पति कहेगा देख लो तुम जैसा ठीक समझो, लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है।
1: इसलिए तो मैं कहती हूँ सुनीता जी कि माँ को अकेला मत छोड़ो, यह सिर्फ माँ का फैसला नहीं परिवार की समझ का होशियारी का फैसला है। अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए और सबको समझाना चाहिए कि ये वैक्सीन क्यों जरूरी है, क्योंकि उसके लिए उसकी बेटी का स्वास्थ्य भी तो जरूरी है। देखो कोई भी समझदार फैसला 3 चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टरों की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी, बाकी तो सब शोर है।
0: बिल्कुल सही कहा टीकन देवी जी आपने। तो श्रोताओं जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे, इसीलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
2: लो फिर मैसेज आया, पड़ोस वाली कमला लिख रही है मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था, अब तो बताओ यह क्या माने?
1: देखो कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन यह डर हर इंजेक्शन में संभव है, इससे यह साबित नहीं हो जाता कि टीका खतरनाक है। बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है, इसे ही विज्ञान कहते हैं। निगरानी, प्रमाण, समीक्षा, यही सब अफवाहें क्या करती हैं, काम बिगाड़ देती हैं। एक घटना उठाती हैं और उसे एक झूठ को सच बना देती हैं।
2: अच्छा मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहाँ क्या पूछूं?
1: देखो सुनीता जी, वहाँ आप सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या HPV वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या यह एक ही डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इसका फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें सारे जवाब साफ साफ देंगे, और अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ।
2: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूँ मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है, कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
1: देखो सुनीता जी, यही तो समझदारी है, जो नहीं पता है उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता है, उसके बाद सही जगह से सही जानकारी लेना। कई लोग तो गलती करते हैं बिना समझे और मानते भी नहीं है और जोर से बोलने लग जाते हैं और जोर की आवाज को ही सही समझ लिया जाता है, इसलिए सही जानकारी बेहद जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा टीकन देवी जी आपने। इसलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों की जानकारियां, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, ना कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।

0: बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। यह बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
1: देखो सुनीता जी, इसीलिए जानकारी जरूरी है, जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है, और जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच, दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ हर घर में जानी चाहिए। और यही सुनो शादा का उद्देश्य है, जो कि स्मार्ट के साथ मिलकर कार्यक्रम चला रहा है, सेहत सही लाभ कई।
0: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ।
1: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घरों में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है तो उन्हें अपनी सेहत की चिंता होती है। यही सब हमें बदलना है।
2: बिल्कुल सही कहा टेकन देवी जी आपने, और ये अक्सर हम देखते भी हैं समुदाय में जाकर के, कि महिलाएं काम में लगी रहती हैं लेकिन अपना ख्याल नहीं रखती हैं। और इन्हीं सब बातों की जानकारी जो देता है वो आपका अपना कार्यक्रम देता है, जिसका नाम है सेहत सही लाभ कही। और सही जानकारी आप तक पहुंचे, यही इस कार्यक्रम का मकसद है। सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया है।
0: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे। वहाँ डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हाँ कहूँगी ना ना, लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं फॉरवर्ड मैसेज देखकर फैसला नहीं करूँगी।
1: बस सुनीता जी, यही तो जीत है। सही सवाल पूछना, सही जानकारी रखना, जागरूक होना, यही तो उद्देश्य है, यही तो हम अपने श्रोताओं को समझाना चाहते हैं। अगर किसी भी विषय के बारे में जानकारी नहीं है तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, CSC PSC जाएं, डॉक्टर से बात करें, ANM से बात करें, आशा वर्कर से बात करें। आजकल तो बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध हैं, लेकिन कभी भी किसी झूठी खबर पर तुरंत विश्वास न करें। बहुत सारे फॉरवर्ड मैसेजेस हमारे सामने रोज आते हैं, उन तथ्यों को ढंग से जांच और परख लें।
0: और अगर डॉक्टर वही कहे जो तुम कह रही हो, तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उससे भी यही कहूंगी, फॉरवर्ड नहीं तथ्य देखो।
1: हाँ सुनीता जी, और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना हमारे जमाने में तो बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, जो आज उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।

0: आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। यहाँ हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में आते रहते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई बार लोग कहते हैं कि हम तो गाँव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियाँ कहाँ। यह भी गलत फहमी है, बीमारी जगह देखकर नहीं आती, जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकते। सरकार इसीलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित ना रहे।
1: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है तब समझ आता है कि बीमारी जात जगह देख कर नहीं आती।
2: और हाँ, इसीलिए तो रोकथाम सबसे जरूरी चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात है। जो चीज सिर्फ पैसों वालों तक सीमित थी, अब वह आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं, समझ से देखना चाहिए।
1: पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
2: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, सब पूछो। जानकारी मांगना आपका अधिकार है और यही अच्छी और बेहतर समझ है और यही नागरिक समझ है।
0: बिल्कुल। और एक और जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
1: मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी। उसकी बेटी भी इस उम्र की है, वह तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
2: जी सुनीता जी, आजकल लोग मोबाइल पर बेहद जल्दी विश्वास करते हैं, फॉरवर्ड मैसेज पर यकीन कर लेते हैं, जिससे बहुत सारी भ्रांतियां फैलती हैं। उसे भी साथ लेकर आओ, दो लोग जाएंगे तो दो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी, सभी थोड़े थोड़े अवेयर होंगे और सेहत की जानकारी चूल्हे की आग की तरह हर जगह फैल जाएगी, एक घर से दूसरे घर पहुंच जाएगी, जैसे कि एक चूल्हे की गर्मी दूसरे चूल्हे की गर्मी तक पहुंच जाती है।
0: बिल्कुल, तो श्रोताओं ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोस, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोले।
1: अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूँ?
2: सुनीता जी, तो आप कहना क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र थी और मुझे पूरी जानकारी सही नहीं थी। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी, अब समझ गई हूँ, इससे बच्चों का भी भरोसा बढ़ता है।
0: बहुत सुंदर, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो, यही संवाद भविष्य बदलता है।
2: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती है कि हमें ये सब नहीं आता, वहाँ भी रास्ता है, सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो, जानकारी का दरवाजा एक नहीं है बल्कि कई सारे हैं।
1: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है, डर अभी भी है पर अब डर के सामने जवाब भी है।
2: बस यही तो हमें चाहिए, सवाल रहे उनके जवाब भी रहे, सही जानकारी रहे, जागरूकता रहे, सभी घरों में सही निर्णय पहुँचे। हम स्मार्ट के साथ मिलकर जो कार्यक्रम चला रहे हैं सुनो शादा 90.8 FM सामुदायिक रेडियो के माध्यम से सेहत सही लाभ कई, हमारा एक ही उद्देश्य है कि समुदाय तक हम एक सही सटीक और सच्ची जानकारी पहुंचाएं। अगर किसी के मन में डर है, भ्रांति है, तो हम उसे दूर करें, खास तौर से महिलाओं के डर, अपनी बेटियों को लेकर वैक्सीन लगवाना कितना सही है, ऐसे कुछ डर हैं जो महिलाओं के मन में बैठ जाते हैं, और ऐसे में सभी को प्रयास करना होगा, परिवार के बड़े सदस्यों से लेकर मुखिया सदस्य से लेकर सभी को मिलकर निर्णय लेने होंगे और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनके स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखना होगा।
0: बहुत सही कहा टीकन देवी जी आपने, तो शुक्रिया बहुत बहुत आपका इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए, और साथ ही साथ सुनीता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए। तो साथियों तो अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रीवेलेंट एचपीवी वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। और छठी और आखिरी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
2: और हाँ, एक बात मेरी भी तरफ से, माँ होना सिर्फ डरना नहीं पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब पहुँचाना यही हम लोगों की असली जिम्मेदारी है।
1: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी।
0: बिल्कुल, यही है सेहत सही लाभ गई की सीख। चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएचसी, सीएससी या जिला अस्पताल में जाकर जानकारी लें, और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही हैं, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए।
2: और अंत में एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में यूविन पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि यह आपके लिए कठिन है तो ये चिंता की कोई बात नहीं, आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं है। हम सब मिलकर आज शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जाँच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिला, बुजुर्ग और बच्चों को सेहत का विशेष ध्यान रखने का सुझाव देंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ रहेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। अब आपसे विदा लेते हैं। आज का जो हमारा विषय था उस पर मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने सुनो शारदा सामुदायिक रेडियो के माध्यम से जागरूकता फैलाई होगी और हमारे श्रोता हमसे ज्यादा ज्यादा जुड़े होंगे। हम एक नए विषय पर नई जानकारी लेकर आपके समक्ष फिर उपलब्ध होंगे। वक्त तो चला है विदा लेने का। सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं जरा सुने।
2: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी

गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल आईक्यू तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड्स सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है, जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहाँ खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800 111-6666 पर संपर्क करें।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आम तौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाएं। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान। किसान मित्रों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही रहता है कि आप तक सही सही जानकारी पहुंचे और उस जानकारी का इस्तेमाल करके आप अपनी खेती को उन्नत बनाएं और जो आपकी आमदनी है वो दुगनी चौगनी हो। इसीलिए सरकार आपके लिए कल्याणकारी योजनाएं लेके आती है, बहुत सी योजनाओं का आप लाभ भी ले रहे होंगे। लेकिन किसान मित्रों, आप अधिक आमदनी चाहते हैं तो आपको खेती के अलावा कुछ और भी करना पड़ेगा। जी हाँ, किसान भाइयों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से किसानों को खेती के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसान भाई खेती के साथ ये काम आसानी से कर सकते हैं। इसी क्रम में सरकार की ओर से किसान भाइयों को मधुमक्खी पालन के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि आप मधुमक्खी पालन का व्यवसाय ठीक से कर सकें और फिर आपकी अच्छी खासी आमदनी भी होती रहे। तो हमारे जो भी किसान भाई खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं और साथ ही साथ अच्छा खासा पैसा वो कमा सकते हैं मधुमक्खी पालन करके। किसान मित्रों, आपको बता दें कि सरकार की ओर से मधुमक्खी पालन को मीठी क्रांति के तहत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग लेने के बाद हमारे जो किसान भाई हैं वो स्वरोजगार खोल सकते हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसका प्रयोग आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के तहत आवेदन करने के लिए कर सकते हैं। आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के जरिए अपने व्यवसाय को अधिक बढ़ा सकते हैं और इसे ऊंचे स्तर तक ले जा सकते हैं। अब बात आती है कि मधुमक्खी पालन की शुरुआत कैसे की जाए, तो ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं एक रागनी। कलाकार हैं प्रियंका चौधरी और किस्सा रहेगा कृष्ण सुदामा का। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

0: तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रियंका चौधरी से कृष्ण सुदामा के किस्से से ये रागनी। और आज हम बात कर रहे हैं खेत खलियान कार्यक्रम में मधुमक्खी पालन की। बहुत सी बातें आपने मधुमक्खी पालन के बारे में सुनी। अब बात निकल के ये आती है कि इस काम की शुरुआत खेती के साथ साथ हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही दिमाग में बात आती है कि काम की शुरुआत तो करें, लेकिन इसमें कितना खर्चा होगा, कितना पैसा लगेगा। तो इसके लिए सरकार की जो ऋण योजना चल रही है उसके बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। यदि बात की जाए मधुमक्खी पालन पर आने वाले खर्चे की, यदि आप शुरू में 10 पेटी से मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहते हैं तो इसमें करीब 35,000 से 40,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। लेकिन जैसे जैसे मधुमक्खियों की संख्या बढ़ने लगेगी, आपका मुनाफा भी बढ़ने लगेगा। आगे आपको सिर्फ मधुमक्खियों के लिए पेटियों की संख्या बढ़ानी होगी। इस तरह आप शुरुआती कुछ पैसा खर्च करके इससे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो अब आपको ये पता चल ही गया कि मधुमक्खी पालन की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। 10-15 पेटी से इसकी शुरुआत की जा सकती है और जो खर्चा होता है शुरुआत में वो 35,000 से 40,000 के बीच में होता है। अब आपको बता दें कि सरकार की ऋण योजना भी चल रही है, तो उस योजना का लाभ उठा करके भी आप इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन काम की शुरुआत कैसे करें? कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो उसकी जानकारी हमारे पास होना बहुत जरूरी है। अब ये जानकारी, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग कहाँ से ली जाए? तो इसका सीधा रास्ता ये है कि आप अपने नजदीकी, जैसा कि हम हर कार्यक्रम में आपको बताते हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि केंद्र हैं, वहां जाकर के जो भी वैज्ञानिक हैं उनसे बात करिएगा कि मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण आपके यहाँ पर कब कब दिया जाता है और कैसे हम इसमें भाग ले सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे। और भी बहुत सारी जानकारी इस व्यवसाय से जुड़ी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही मधुमक्खी पालन व्यवसाय की। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना। किस्सा रहेगा हरिश्चंद्र तारामती का। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।
1: मेरा घड़ा तो ठवा दे प्यारी, अच्छा? सारे

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे हरिश्चंद्र तारामती के किस्से से ये रागनी। कलाकार थे ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना। किसान मित्रों, खेती में पानी की खपत को कम करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। आपको पता ही है कि जल का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यानी कि जल का संकट बढ़ रहा है और किसानों के लिए कम पानी में अधिक खेती करना एक चुनौती बन चुका है। सही तकनीक और उपकरणों के इस्तेमाल से, जैसे एग्रीकल्चर स्प्रेयर मशीन, इससे हमारे किसान भाई अपनी खेती में पानी की बचत कर सकते हैं और अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। लेकिन आजकल आधुनिक तकनीकों के उपयोग

ये हमारे किसान मित्र कम पानी में ज्यादा फसल उगा सकते हैं। पानी बचाने के लिए भी किसानों को आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। हमें समय के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना ही होगा। तो किसान मित्रों, आज के समय में जो सिंचाई की आधुनिक तकनीकी हैं, उनमें ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी की बर्बादी रोकी जा सकती है और खेतों की सिंचाई की जा सकती है। इसके अलावा बारिश के पानी का संचयन करके सिंचाई के लिए पानी का उपयोग किया जा सकता है। मल्चिंग तकनीक अपनाने से मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिससे सिंचाई की जरूरत कम हो जाती है। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही आधुनिक तकनीकों की, जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी फसलों की सिंचाई कर सकते हैं, साथ ही साथ पानी की बचत कर सकते हैं और अपना पैसा भी बचा सकते हैं। और अब किसान मित्रों, कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं बलराम बैसला और खस्सा रहेगा द्रौपदी चीर हरण का।

बलराम बैसला द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: मेहरबानो पीछे से विश्वामित्र एकदम से आगे, ठहरो सत्यवादी हरिश्चंद्र, अब तुम्हारी परीक्षा का समय आखिर आ लिया।

पूरा धर्म निभाया हरिश्चंद्र ने। मेहरबानों, ये धार्मिक प्रोग्राम आप चंदा केसेट के सौजन्य से सुन रहे हैं, जिसमें नए नए किस्से आने वाले समय में आप सुनेंगे हमारी आवाजों में और हमारे इसी संगीत पर। हारमोनियम हंसराज, विशाल नक्कारा

0: ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब जिसे हम कहते हैं मूत्र, अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
2: छह माह का होने के बाद बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसे अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है और ये बड़ी हुई जरूरत केवल माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए छह माह पूरे होने पर बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। सुनो शारदा 90.8 FM एक खास विषय पर काम कर रहा है जिसका नाम है हिंसा को नो, और इसी संबंध में कई श्रृंखलाएं हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। और पहले दो भाग हमने आप तक पहुंचाए हैं, जैसे कि बेटियां हैं तो वंश है, प्रजनन अधिकार, इस संबंध में बात की गई, भ्रूण हत्या, लिंग अनुपात, बेटे होने पर उत्सव और रिवाज। दूसरा एपिसोड था बालिका या वधू, इसके अंतर्गत बात हुई बचपन का हनन, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना। आज एक ऐसा ही खास विषय है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं और जिसके बारे में समाज के लोग बात भी नहीं करना चाहते, सुनना या समझना नहीं चाहते। एक ऐसा विषय जो कि कहीं ना कहीं हमारी प्रथाओं से जुड़ा हुआ है, परंपराओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन डॉक्टर इसको सही नहीं मानते, विशेषज्ञ और कानून इसको गलत मानते हैं। आज का विषय है खतना, धर्म नहीं दर्द। इसी संबंध में आज हम बात करेंगे बाल उम्र में शारीरिक दर्द, रिवाज और कानूनी सलाह के बारे में। बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम धर्म के नाम पर चल रही प्रथाओं के दूसरे पहलू के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसा पहलू जो कि अनदेखा अनसुना पहलू, जिसे हम देखते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं। भारत की सुंदरता इसकी संस्कृति और रीति रिवाजों में है, पर जब इन रिवाजों का पालन समुदायों द्वारा बिना किसी पूछताछ के किया जाता है तो वो एक सामाजिक बुराई का रूप ले लेती हैं। हालांकि ये कुप्रथा विश्व के मुकाबले में भारत में कम प्रचलित है, लेकिन भारत के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जहां फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन यानी कि महिला जननांग विकृति की प्रक्रिया होती है, जैसे कि अफ्रीका के कई देशों में इस प्रथा को अवैध करार दिया गया है। एक खबर पर अगर हम गौर फरमाएं तो एक सुपर मॉडल ने साहस देते हुए अपनी बात समाज को बताई और कहा कि इस प्रथा के अनुरूप उनके जननांग को काटकर सिल दिए जाने का उन पर जीवन भर प्रभाव रहा। वो इसे बाल उत्पीड़न और लैंगिकवादी प्रथा करार देती हैं। महिला जननांग विकृति यानी FGM से गुजरने वाली लड़कियां भयानक मनोवैज्ञानिक दर्द से गुजरती हैं, और ये जो प्रक्रिया है मैं आपको बताना चाहता हूं, इतनी खतरनाक होती है, इतनी दर्द भरी होती है, या यूं कहें कि इतनी दर्दनाक है कि वो अक्सर आने वाले वर्षों के लिए अत्यधिक भय और चिंता से ग्रसित हो जाती है। कई विशेषज्ञों ने अतीत में माना है कि जननांग विकृति से गुजरने वाली महिलाओं को सामान्य आबादी में महिलाओं की तुलना में मनोरोगों के विकास की अधिक संभावना होगी, लेकिन इस विश्वास की पुष्टि करने के लिए बहुत कम शोध हुए हैं। लड़कियों पर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन के कई शारीरिक दुष्प्रभाव होते हैं, कुछ तो समय के साथ नजर आते हैं और कुछ तत्काल नजर आते हैं, जिनमें मानसिक रोग की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, रक्तस्राव, जीवन संक्रमण और यूरिन से संबंधित समस्याएं। ये दौर इतना खतरनाक होता है, इतना भयभीत होता है कि यहां तक कि एक लड़की की मौत भी हो सकती है। और इसके दुष्परिणामों का जब हम यहां जिक्र कर ही रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, लंबे समय तक के दुष्प्रभावों में मूत्राशय में संक्रमण, अल्सर, बांझपन, जन्म देते समय कठिनाइयां, प्रसव के दौरान शिशु की मृत्यु का जोखिम भी इत्यादि शामिल है। फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन यानी महिला जननांग विकृति के बारे में जिस तरीके से मैं बात करता आ रहा हूं कि जब भी हम इस विषय पर बात करते हैं तो बड़ा अजीब लगता है, बहुत बुरा महसूस होता है। और जब यही विचार अगर हम किसी महिला से जाने या किसी के साथ आप बीती हो या किसी के देश में इस तरीके की घटनाएं उसने नजदीकी से देखी हो तो क्या माहौल होता है, यही सारी बातें करने के लिए शारदा विश्वविद्यालय की एक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिनका नाम है एस्थर, जो कि नाइजीरिया से हैं। आइए सुनते हैं कि इस संबंध में उनका क्या कहना है।
6: गुड डे, मेरा नाम लेडी एस्थर है और मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की छात्रा हूँ। मैं नाइजीरिया की निवासी हूँ और आज मैं FGM यानी फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन के बारे में चर्चा करूँगी। अगर हम अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया की बात करें तो FGM का आचरण 31 देशों में है। ये सबसे अधिक जिबूती, इजिप्ट, गिनी और माली में प्रचलित है, जहाँ 90% से अधिक महिलाओं को FGM से गुजरना पड़ता है। मेरे हिसाब से FGM का होना ही गलत है और मैंने इससे जुड़ी बहुत सी कहानियां सुनी हैं जो कि मेरे खुद के देश की ही हैं। वैसे तो ये प्रक्रिया नाइजीरिया में गैर कानूनी है, पर फिर भी छोटे गांव में ये अभी भी देखने को मिलती है और इसे वहां के लोग एक धार्मिक कर्म मानते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा करना बहुत ही गलत है क्योंकि महिलाओं के साथ जो हो रहा है उन्हें उसके बारे में पता भी नहीं होता है। मेरे हिसाब से महिलाओं को अपने शरीर पर होने वाली हर एक चीज के बारे में सचेत होना चाहिए इससे पहले कि उनके साथ कुछ बुरा हो जाए।
7: थैंक यू।
5: ये थी लेडी एस्थर जो कि नाइजीरिया से हैं और इस वक्त शारदा विश्वविद्यालय में मास कॉम के स्टूडेंट हैं। फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन यानी FGM, जिसको हम हिंदी में कह रहे हैं, महिला जननांग विकृति के विषय में इन्होंने खुलकर बात की। मैं अब आपको विश्व के आंकड़े सामने लेकर आ रहा हूं। अब तक अगर हम विश्व के आंकड़ों पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि 20 करोड़ से ज्यादा लड़कियों को इस बेरहम प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। ये प्रथा अफ्रीका के कई देशों, साथ ही साथ मिडिल ईस्ट और एशिया में देखने को मिलती है। भारत में एक ऐसा समुदाय है जिसे बोहरा समुदाय कहा जाता है। बोहरा समुदाय की ये दर्दनाक प्रथा सिर्फ एक अंधेरे कमरे तक ही सीमित थी, उनके समुदाय में ही इसका प्रचलन था। बाहरी लोग इस प्रथा से बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे, पर अब समय के साथ साथ बदलते हुए कुछ महिलाएं जो इस प्रथा का शिकार बन चुकी हैं, उन्होंने आगे आने का साहस दिखाया और ऐसे कई वर्षों से चलती आ रही इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी उठाई, या यूं कहें कि एक बीड़ा उठाया। आइए जानते हैं एक ऐसी ही पीड़ित महिला की कहानी जो कि गुजरात की रहने वाली है।
6: मेरा नाम सलमा है, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। आज भी जब वो दिन याद करती हूँ तो अपने सामने रखा ब्लेड, खून से लिपटा गंदा कपड़ा और अपने ओर बढ़ते हुए दो हाथ याद आते हैं। सिर्फ 8 साल की ही तो थी मैं जब उस दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा मुझे। आज भी वो चीख मेरे कानों में गूंजती है। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरे घर वाले ही मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पूरे 1 महीने तक सिर्फ एक कमरे में बंद होकर बिस्तर पे पड़ी रही मैं और सिर्फ दर्द से कर्राती रही। आज 20 साल बाद जब पीछे देखती हूँ तो मुझे खुद पे गुस्सा आता है कि क्यों समय ही मैंने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन उठाती भी तो कैसे, सिर्फ 8 साल की ही तो थी मैं। ये सोच के भी बड़ा दुख होता है कि कैसे मेरी खुद की माँ और दादी ने मेरे साथ ये सब कर दिया। एक औरत होने के बावजूद भी कोई ऐसा अपनी खुद की बच्ची के साथ कैसे कर सकता है। लेकिन अब इन सब से बहुत दूर आ चुकी हूँ मैं और जो मेरे साथ हुआ है वो मैं अपनी बच्चियों के साथ कभी भी नहीं होने दूंगी।
5: ये तो रही सिर्फ बात एक महिला की, और अगर मैं पूरे भारतवर्ष की बात करूं या पूरे विश्व की बात करूं तो न जाने ऐसी तमाम महिलाएं इस दर्द से कराह रही हैं, पीड़ित हैं। और ये सारी चीजें महिलाओं के अधिकारों का हनन है। वो जिंदगी सामान्य तरीके से जीना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहती हैं। हमारा, आपका, हमारे रेडियो स्टेशन का फर्ज बनता है कि वो सारी बातें जो उनके अधिकारों से जुड़ी हुई हैं हम आप तक पहुंचाएं। और इसी संबंध में ये खास कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस संबंध में कानून के जानकार या डॉक्टर विशेष तौर पर बता सकते हैं कि ये प्रथा कितनी गलत है और डॉक्टर क्या कहते हैं इस संबंध में कि एक महिला पर उसके शरीर पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता है जब वो इस दर्द से गुजरती है। आइए सुनते हैं डॉक्टर शैला जमाल को।
8: मेरा नाम डॉक्टर शैला जमाल है, मैं शारदा हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह काम करती हूँ। आज हम आपके साथ बात करेंगे FGM के बारे में। FGM यानी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। किसी के भी बॉडी पार्ट्स को बिना उसकी परमिशन, बिना उसकी इजाजत के निकालना, सिर्फ अपनी जो एक धारणा है उसके लिए उस पर काम करना, जिस चीज का कोई मेडिकल बेनिफिट या कोई साइंटिफिक एविडेंस या बेसिस नहीं है उसको परफॉर्म करना, मैं समझती हूँ ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ ही एक काम है जिसके लिए आपको, मुझको, हम सबको आवाज उठानी है। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अभी तक जितनी भी जानकारी हमें इसके बारे में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये ईस्टर्न, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा परफॉर्म किया जाता है। एशिया में भी इसका काफी प्रचलन है लेकिन कुछ जगहों पर कॉन्सेंट्रेशन है। पूरी दुनिया में इसके खिलाफ मोर्चा खोला गया है, बहुत मुहिम जारी की गई है और आप सबसे अपील है कि आप भी इस सब में हमारा साथ दें। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स को दिया जाता है, कभी कभी बिना एनेस्थीजिया यानी कि बिना बेहोशी के भी। ये एक बर्बरता है जो वो लड़कियां झेल रही हैं। वो लड़कियां, मैं समझ सकती हूँ और मेरे ख्याल से अभी तक आप सब भी समझ गए होंगे कि उसके जो मानसिक स्थिति है, उसकी जो मेंटल हेल्थ है, वो तो किसी भी तरह से स्वस्थ नहीं रह पाएगी। फिजिकली तो हमने उसको इतना बड़ा ट्रॉमा दे दिया है और सिर्फ उसके चरित्र को या उसके कैरेक्टर को बचाने के लिए हम ये करते हैं, ये कहकर उसके चरित्र को शरीर के उस भाग से जोड़ दिया है। तो ये कहीं से भी ह्यूमैनिटी के तरफ किया जाने वाला काम नहीं है, उसके अगेंस्ट है, राइट्स के अगेंस्ट है, मेंटल हेल्थ के अगेंस्ट है, फिजिकल हेल्थ के अगेंस्ट है। कुछ लोग जो इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं और शायद सुनो शारदा की माध्यम से हम उन तक पहुंच भी पाएं, तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूं कि अगर इस तरह का कोई भी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का किसी भी टाइप का एपिसोड किसी के साथ हुआ है, आप उसे जागरूकता प्रदान करें, उसको बताएं कि वो भी नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ लीड कर सकती है। थोड़ा सा मेडिकल चेकअप होने के बाद और साइकोलॉजिकल इमोशनल काउंसलिंग के बाद वो लोग भी अपनी लाइफ अच्छी तरह से गुजार सकते हैं और इसके लिए उनको डेफिनेटली बहुत ज्यादा काउंसलिंग, बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत पड़ेगी और हम सबको भी आगे आके उनकी मदद करनी चाहिए। और उनके लिए जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं, जितने सोशल मीडियास हैं, टीवी है और मैं समझती हूँ रेडियो एक बहुत अच्छा माध्यम है, उससे हम बता सकते हैं कि हम उनकी हेल्प के लिए हमेशा हैं। वो कभी भी किसी भी डॉक्टर, स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। वी आर देयर फॉर यू एंड वी प्लेज अगेंस्ट फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन।
5: भारत में फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन यानी महिला जननांग विकृति के अंतर्गत दो फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है। पहला आर्टिकल 15 जो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव करने से रोकता है, और दूसरा आर्टिकल 21 जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। UNFPA के डेटा के हिसाब से करीब 59 देशों ने खतना प्रथा के खिलाफ कानून निकाले हैं, जिनमें यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, डेनमार्क, स्पेन और विश्व के कई देश इसमें शामिल हैं। मई 2017 को जनहित याचिका दर्ज की गई थी एक दिल्ली आधारित महिला वकील सुनीता तिवारी के द्वारा, जिन्होंने भारत में स्त्री खतना को प्रतिबंधित करने की याचिका डाली थी, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी अभी तक कानून नहीं बनाया गया है। और आर्टिकल 26 जो किसी भी प्रकार के वैधानिक रूप से धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने या उसे चलाने की स्वतंत्रता देता है, वहीं समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन कानूनों का गलत तरीके से सहारा लेकर ऐसी बेरहम प्रक्रिया यानी जिसे हम कह रहे हैं महिला जननांग विकृति को यानी खतना को
9: बढ़ावा दे रहे होते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। सिर्फ एक कल्पना मात्र से ही मैं डर रहा हूं, भयभीत हो रहा हूं। सोचिए, कल्पना करिए कि जिस बच्ची के साथ ये सब हो रहा होता है तो उसकी हालत क्या होती है। ये सब सोचकर ही कहीं ना कहीं हम सबकी रूह कांप रही होगी। 5 से 6 साल की लड़की को एक अंधेरे कमरे में बहाने से ले जाकर उसे फर्श पर लेटा दिया जाता है और फिर गर्म ब्लेड या किसी धार वाली वस्तु का इस्तेमाल करके उसके बाहरी जननांग को काट दिया जाता है। वो लड़की चीख रही होती है, दर्द से कांप रही होती है, पर सिर्फ एक प्रथा को बनाए रखने के लिए उसके घर वाले उसे नरक का सामना करा देते हैं। सुनो शारदा 90.8 FM ने आज एक खास विषय पर बात की, बाल उम्र में शारीरिक दर्द और झूठे रिवाजों के खातिर आखिर हमारी बहन बेटियां खतना का दर्द कब तक सहती रहेंगी। आपका, हमारा, हम सब का फर्ज बनता है कि इस कुप्रथा को आइए हम सब मिलकर रोकें, उनके अधिकारों का हनन न होने दें। वो भी जिंदगी को जीना चाहती हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहती हैं और इस दर्द से वो छुटकारा चाहती हैं। सुनो शारदा 90.8 FM आप सबसे अपील करता है कि इस दर्द से उनको छुटकारा दिलाए। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं 01204060205 पर। सुनते रहें ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्यामू।
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो,
0: क्या हाल?
2: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6000 रुपए में हो रही है।
2: अच्छा तो भैया लेके चल, अब ही चल।
3: तो अब ही चलो।
4: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा?
1: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
2: जी दीदी, जैसे रहुआ कहला रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखे नी, ओकेरा के तुरंत साफ करें, जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे
3: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कोनो भी चीज में पानी जमा

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं, बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए मित्रों, अब चलते हैं कक्षा 5 की ध्वनि शाला में।
2: प्यारे बच्चों, आप सभी को उषा दीदी की तरफ से ढेर सारा प्यार और नमस्कार। आज मैं आप सबके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी भारत की नहीं है, ये कहानी है तिब्बत की। हम जो कहानियां कहते हैं, सुनते हैं, वे सब कहानियां हमारी संस्कृति का एक हिस्सा होती हैं, या यूं कहें कि संस्कृति का ही एक रूप पुरानी कहानियों में अभिव्यक्त होता है। जो कहानियां सैकड़ों वर्षों से चली आ रही हैं, उन्हें लोक कथा कहते हैं। ये कहानियां आज हमें किताबों में पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन पुराने समय से लेकर आज तक ये लोगों की यादों में ही जीवित रही हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सुनाई जाती रही हैं। दुनिया के हर समाज में लोक कथाएं सुनी सुनाई जाती हैं। इनमें से कुछ कहानियां मिलती जुलती होती हैं, लेकिन हर जगह की लोक कथा अपना कुछ अलग रूप लिए भी रहती है। आज जो आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये तिब्बत की लोक कथा है। तो आज हम सुनेंगे तिब्बत की लोक कथा, लेकिन कहानी का नाम क्या है ये तो मैंने बताया ही नहीं। आपने पूछा भी तो नहीं। तो आपने अगर कहानी का नाम पूछा है तो मैं कहानी का नाम बता देती हूँ। कहानी का नाम है राख की रस्सी। ये कैसा नाम है? ये ही तो नाम है, राख की रस्सी। आप सोच रहे होंगे बच्चों कि राख की रस्सी कैसे बन सकती है। रस्सी तो अलग होती है और राख अलग होती है, और राख की रस्सी कैसे बन सकती है? तो बस यही राज है इस कहानी का। इस कहानी में ऐसे बहुत सारे राज छिपे हुए हैं जिन्हें सुनने में आपको बहुत मजा आएगा। तो हम शुरू करें अपनी कहानी। तो लीजिए, पेश है आप सब बच्चों के लिए एक लोक कथा, तिब्बत की लोक कथा राख की रस्सी। पता है बच्चों, लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सेन गांपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था, चैन से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। बस यही चिंता लोनपो गार को सताती रहती थी। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। बच्चों, जानते हैं आगे क्या हुआ? लोनपुगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहां थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी पता है क्या हुआ? तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपुगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। अब बेचने से जो रुपए मिले, उससे उसने जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन पता है क्या किया? दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल काट कर बेचना मुझे जरा पसंद नहीं आया, अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोन पुगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और पता है बच्चों क्या हुआ? हुआ भी वही कि वह लड़की आई। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में घुसने नहीं देंगे, लड़की सोच कर बोली। एक तरीका है, उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीद लिए। बोरे लोन पुगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। पता है आगे क्या हुआ? भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोन पुगार का बेटा बहुत खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोन पुगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। पता है लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोन पुगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। पता है बच्चों क्या हुआ होगा आगे? अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोन पुगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोन पुगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोन पुगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। कैसी लगी आपको कहानी? अब पता चला इस कहानी का नाम क्यों था, राख की रस्सी। दरअसल कहानी में जो सबसे अंत में हुआ, कहानी का नाम उसी के आधार पर रखा गया। लेकिन आप इस कहानी के और बहुत सारे नाम सोच सकते हैं। कहानी का नाम हो सकता है लड़की की चतुराई, या लड़की की होशियारी, या फिर लोन पुगार का घमंड चूर हो गया, या घमंडी लोन पुगार। आप इस कहानी का कोई भी नाम रख सकते हैं। कहानी में जो कुछ हुआ, जैसे जैसे घटा, बस आप उन्हें ध्यान से सोचिए और उसके आधार पर आप कहानी का कोई नाम रख सकते हैं। अच्छा बच्चों, आप ये बताइए कि लोन पुगार अपने बेटे के बारे में इतना चिंतित क्यों था? कहानी में तो ये कहा गया है कि वह बहुत भोला था, होशियारी उसे छू कर भी नहीं निकली थी। लेकिन क्या भोला होना अच्छी बात नहीं है? क्या होशियारी, बहुत होशियार होना ही चाहिए सभी को? और होशियारी का मतलब क्या है? तो बच्चों, भोलापन, सहजता, छल कपट ना हो, ये अच्छी बात है। लेकिन लोन पुगार अपने बेटे के बारे में ये सोच सोच कर परेशान थे कि न जाने मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, दुनिया तो उसे बेवकूफ बना लेगी। लेकिन ऐसा नहीं था। ये अच्छी बात है कि लोन पुगार भोला था, होशियारी नहीं थी उसमें, यानी कि छल कपट उसमें नहीं था। लेकिन एक बात तो बहुत अच्छी थी, और वह क्या बात थी बच्चों? वह यह बात थी कि जब जब लोन पुगार ने बेटे को कोई काम करने के लिए कहा, तब तब लोन पुगार के बेटे ने वो काम किया। लेकिन लोन पुगार के बेटे ने अपने पिता से ये सवाल नहीं किया कि ये काम आप उसे क्यों दे रहे हैं। बस लोन पुगार ने अपने बेटे से काम करने के लिए कहा और लोन पुगार के बेटे ने वह काम कर दिया। अब आपको ये सोचना है कि अगर इस कहानी में लड़की नहीं होती, तो क्या होता, तो कहानी तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती। कहानी कहाँ खत्म होती, वहीं जहाँ पहली बार लोन पुगार ने अपने बेटे से कहा कि तुम ये भेड़ लेकर जाओ और जौ के 100 बोरों के साथ वापस आना, तो कहानी तो वहीं खत्म हो गई होती। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं, नहीं, कहानी वहाँ खत्म नहीं होती। लेकिन क्यों नहीं होती? वह इसलिए नहीं होती, अगर लड़की नहीं मिलती तो कोई और मिलता, कोई और व्यक्ति मिलता लोन पुगार के बेटे को और वह इस समस्या का समाधान बता देता। अच्छा बच्चों, आप एक बात और सोचिए, क्या ये जरूरी है कि हमारे पास कोई समस्या हो और हर बार हमें कोई व्यक्ति उस समस्या का समाधान बताए? ये तो जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हम कभी समझदार बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि समस्या आएगी और हमें लगेगा कि उस समस्या को सुलझाने के लिए कोई एक व्यक्ति हमारी मदद करेगा और फिर हमारी समस्या सुलझ जाएगी। यानी हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। और हमें करना क्या है? हमें यही करना है, अगर हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम उसका समाधान खोजने की कोशिश करें, खूब जोर डालें अपने दिमाग पर कि अच्छा ये समस्या है तो इसका समाधान क्या हो सकता है। लेकिन लोन पुगार के बेटे को हर बार वो लड़की मिल गई, लड़की ने एक समाधान बता दिया, वही समाधान लेकर लोन पुगार का बेटा अपने पिता के पास चला गया। तो यानी कि लोन पुगार के बेटे को तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपनी समस्याओं के समाधान खुद खोजने हैं। अगर नहीं भी मिल पाए मान लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तसल्ली तो होगी ना कि हमने मेहनत की है, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आप अपने दिमाग में जितनी तरह के समाधान खोज सकते हैं वो खोजने की कोशिश करते, धीरे धीरे हम समस्याओं का समाधान करने लगते, बस ऐसे होता जाता। लोन पुगार के बेटे ने जब दूसरी बार लड़की से समाधान मांगा तो उसने ये भी सोचा था और उसे ये लग रहा था कि लड़की यहाँ जरूर आएगी। तो लोन पुगार के बेटे को ऐसा क्यों लगा कि वह लड़की मुझे दोबारा मिलेगी? अगर वह लड़की नहीं मिलती तो कहानी कैसे आगे बढ़ती? तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे कह रहे होंगे कि अगर यह लड़की दोबारा नहीं मिलती तो कोई तीसरा व्यक्ति मिलता, और कोई तीसरा व्यक्ति मिलता तो लोन पुगार के बेटे की समस्या का समाधान भी बता देता, तो कहानी फिर आगे बढ़ती। तो लोन पुगार ने उस लड़की की परीक्षा क्यों लेनी चाहिए? आपको इसका जवाब मिलता है कुछ? सोचिए। अब आपकी इस समस्या का समाधान करने के लिए ना तो लड़की आएगी और ना कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और ना ही मैं आपकी मदद करूंगी। तो बच्चे सोचिए कि लोन पुगार ने उस लड़की की परीक्षा क्यों ली? आप में से कुछ बच्चे ऐसा कहेंगे कि लोन पुगार अपने आप को बहुत चतुर समझता था और उसे ये नहीं लगता था कि कोई दूसरा व्यक्ति उससे ज्यादा चतुर हो सकता है। ये तो हो सकता है। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि लोन पुगार आखिर उस लड़की तक पहुंचना चाहता था कि वो कौन व्यक्ति है जो मेरे बेटे की मदद कर रहा है, वह उस व्यक्ति की चतुराई की परीक्षा लेना चाहता था। लेकिन कुछ बच्चे ये भी तो कह सकते हैं कि लोन पुगार अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित था कि मेरे बाद उसका क्या होगा। याद आया आपको कहानी में? बिल्कुल सही कहा आपने, लोन पुगार को ये चिंता रहती थी कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, और अगर कोई व्यक्ति मेरे बेटे की इस तरह से मदद कर रहा है तो यकीनन वह बहुत समझदार होगा, और अगर मैं उस व्यक्ति के साथ अपने बेटे को छोड़ दूं या उस व्यक्ति को अपने घर ले आऊं तो मेरे बाद मेरा बेटा और वह व्यक्ति साथ साथ रहेंगे, तो मेरे बेटे के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो लोन पुगार के बेटे ने जब हर बार आकर अपनी आपबीती सुनाई, उस लड़की की चतुराई के बारे में बताया, तो लोन पुगार को ये तसल्ली हो गई थी अगर इस लड़की के साथ मेरे बेटे की शादी हो जाती है तो फिर मैं चैन से रह सकता हूँ, फिर मुझे अपने बेटे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए लोनपोगार ने उस लड़की की परीक्षा लेनी चाही। और उसने परीक्षा के लिए क्या चुना था? उसने परीक्षा के लिए एक असंभव बात चुनी थी। और ये असंभव बात क्या थी? असंभव बात यही तो थी, राख की रस्सी। यानी कि एक राख की रस्सी कैसे बन सकती है? रस्सी को तो हम पकड़ते हैं, रस्सी को पकड़कर हम ऊपर चढ़ जाते हैं, रस्सी से हम सामान को बांधते हैं और नीचे डाल देते हैं, लेकिन राख की रस्सी तो कैसे काम करेगी? और कहानी में ये भी तो कहा गया है कि राख की रस्सी को तो हम छू भी नहीं सकते, जैसे ही छुएंगे उसे वैसे राख बिखर जाएगी और रस्सी खत्म हो जाएगी। तो लोनपोगार को ये समझ में आने लगा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि राख की रस्सी बन जाए, इसलिए उसने लड़की की ये शर्त मान ली थी कि हाँ, मैं राख की रस्सी लेकर आऊंगी, लेकिन आपको उसे पहनना होगा। बस लोनपोगार यही मात खा गए और लड़की की चतुराई के सामने उनकी अपनी चतुराई धरी की धरी रह गई। तो मजा आया इस कहानी में? आपके पास भी तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं होंगी, बहुत सारे चतुराई वाले सवाल होंगे जिनके जवाब खोजने में आपको मजा आएगा। तो आप कुछ ऐसी ही मजेदार समस्याएं खोजिए और उनके समाधान खोजिए और हमें जरूर बताइएगा। तब तक मैं उषा दीदी आप सभी से विदा लेती हूँ और आप सब बच्चों को ढेर सारा प्यार और नमस्कार, इस उम्मीद के साथ कि हम बहुत जल्दी एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला, निर्माण सहायक मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता, ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो, कार्यक्रम निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: कभी तो हंसाए।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: टीवी न छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

स्वाभिमान की दो अहमियत है। एक तो ये कि बर्मन साहब के साथ मेरी सबसे आखिरी पिक्चर है और बर्मन साहब की लाइफ की भी सबसे आखिरी पिक्चर है अभिमान, उसके बाद वो फिर रहे नहीं दुनिया में। और उसमें एक गीत था, मुझे वो गीत बस पसंद ली, बहुत पसंद है, न जाने आप लोगों को पसंद होगा या नहीं, कि तेरे मेरे मिलन की ये रहना, नया कोई गुल खिलाएगी तभी तो चंचल है तेरे नैना।

0: Bingo on Malaysia card, the end.
1: Eh?
0: दिमागी बुखार का दी एंड। ये
1: तारा तुम कर क्या रही हो? तारा
0: तारा लड़ रही है अब्बा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
1: ओह।

0: अक्षरों पे कैसे करना है वार, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

मट्टी मेरी धरती, लीजिए प्रस्तुत है सौर मंडल कैसे बना। श्रोताओं, ब्रह्मांड के रहस्यों से शुरू हुआ हमारा सफर आज हमें सौर मंडल के उद्भव पर ले आया है। आज की इस कड़ी में हम जानेंगे सौर मंडल कैसे बना और बिग बैंग के आगे की कहानी। तो प्रस्तुत है सौर मंडल कैसे।

0: गया ये लड़का।
1: मानव, क्या है दीदी?
0: मानव जरा अपने नए कलर तो देना।
1: वो 12 रंगों वाले?
0: हाँ हाँ वही, चल जल्दी से ले आ।
1: पर दीदी वो तो नए हैं।
0: अरे तो क्या हुआ, और वैसे भी किसी को अगर कुछ दो तो अपनी सबसे प्यारी चीज दो, जो खुद को पसंद नहीं वो देने से क्या फायदा।
2: सृष्टि, अरे सृष्टि क्या हुआ भाई, क्या बात चल रही है?
0: विवेक भैया, मानव अपने नए कलर नहीं दे रहा, मुझे जरूरत है।
1: दीदी वो पुराने वाले कलर ले लो ना।
3: सुनो सुनो सुनो बच्चों, तुम्हारे पापा नवनीत अंकल को लेकर आ रहे हैं यहाँ। चलो चलो जल्दी से अपना कमरा ठीक कर लो।
0: कमरा क्यों ठीक कर ले?
2: अरे सृष्टि, नवनीत अंकल 2 दिन हमारे यहीं रहेंगे इसलिए।
1: ओह अच्छा, वो टेलीस्कोप वाले नवनीत अंकल?
0: हाँ हाँ वही, पता है वो खगोल विज्ञानी है।
2: हाँ, रोज वो ग्रहों तारों और अंतरिक्ष की सैर करते हैं।
1: क्या अंतरिक्ष के सैर?
2: हाँ।
1: क्या वो अंतरिक्ष यात्री है?
0: अरे नहीं मानव, विवेक भैया का मतलब है कि नवनीत अंकल रोज से अंतरिक्ष को निहारते हैं, समझे?
1: अच्छा।
3: आ गए। नमस्ते भाई साहब।
4: नमस्ते बाबू जी। नमस्ते।
3: कैसे हैं?
0: नमस्ते अंकल। ठीक है पापा।
4: और विवेक, सृष्टि, मानव कैसे हो तुम लोग?
0: बिल्कुल ठीक अंकल।
2: बिंदास।
4: और बताओ क्या चल रहा है?
3: लीजिए भाई साहब, पानी लीजिए।

0: शुक्रिया भाभी जी। हाँ तो भाई, मानव का क्या हाल है?
1: अरे अंकल, मानव ने तो आपको अंतरिक्ष यात्री बना डाला।
0: सृष्टि, पिछली बार मिले थे तो मानव काफी छोटा था। सृष्टि से कुछ सामान या खिलौने को लेकर लड़ रहा था।
2: आज भी मानव एक छोटी सी लड़ाई लड़ रहा था।
3: लड़ाई अच्छा, किस बात पे?
1: अरे पापा, अपने नए कलर मुझे देने में इसको परेशानी हो रही है।
0: अच्छा, अरे सृष्टि, मानव कभी धरती ने हमें देते हुए कुछ नहीं सोचा, तो हम सोचने वाले कौन होते हैं? हम तो इस धरती के सामने बहुत छोटे हैं, फिर भी ये अपना प्यार देखो हम पर लुटाती चली जाती है।
4: बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब आपने, धरती ने तो बस देना ही सीखा है हमें।
0: बिल्कुल भाभी जी, भाई इस देने में ही तो पूरा ब्रह्मांड बन गया। ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ ये पता है? सब कुछ बस दिया ही दिया है।
1: हाँ अंकल, डॉक्टर अंजुम ने ब्रह्मांड के बारे में बताया था कि एक महाविस्फोट बिग बैंग के साथ पूरा ब्रह्मांड बना और फैलना शुरू हुआ।
5: हाँ अंकल, और ये भी बताया कि सारी मंदाकिनियां एक दूसरे से दूर भाग रही है, पर हमारे सौर मंडल का तो नंबर ही नहीं आया।
0: अरे आता कैसे भाई, बिग बैंग को हुए तो 15 अरब साल हो गए और हमारा सौर मंडल तो 4.5 अरब साल पहले ही बना है।
1: अच्छा अंकल, इस बीच में क्या हुआ?
0: देखो सृष्टि, इस बीच में मूल कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स बने, नए परमाणु बने जैसे हाइड्रोजन और फिर हीलियम। वैसे इस सब में बस कुछ मिनट ही लगे।
1: शुरुआत में तो तापमान बहुत ज्यादा था ना अंकल?
0: पर धीरे धीरे ब्रह्मांड ठंडा हो रहा था, इसी कारण से तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मिलकर हीलियम या हाइड्रोजन बनाने लगे। करीब 1,00,000 साल में तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास गिर गया।
5: अंकल, फिर तो सबसे पहले मंदाकिनी ही बनी होगी।
0: देखो मंदाकिनी सबसे पहले ही बनी क्योंकि ठंडी हो रही गैस एक साथ हो गई। हाँ, इससे वो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा अन्य पदार्थ को भी आकर्षित करने लगी। बाद में मंदाकिनियों के ये आरंभिक रूप अपने ही वजन से सिकुड़ने लगे।
1: और कोई अंतर नहीं आया अंकल?
0: सृष्टि, उनके और टुकड़े हो गए। ये टुकड़े इतने भारी थे जितने तारे होते हैं।
5: अच्छा, फिर क्या हुआ?
0: फिर ये गैस के गोले जो मंदाकिनी के ही टुकड़े थे सिकुड़ते गए, पर इस प्रक्रिया के दौरान उनका तापमान बढ़ गया।
1: कितना तापमान बढ़ गया अंकल?
0: लगभग 10,00,000 डिग्री सेल्सियस।
1: इतना तापमान तो तारे के केंद्र में होता है ना?
0: अरे बिल्कुल सही सृष्टि, बिल्कुल सही।
1: थैंक यू अंकल।
0: फिर ये गोले इस तरह तारे बन गए क्योंकि 10,00,000 डिग्री सेल्सियस तापमान का मतलब है कि इनके केंद्र में नाभिकीय अभिक्रिया होने लगी।
5: अच्छा।
0: पर केंद्र में गर्मी पैदा होने का मतलब हुआ कि इनका सिकुड़ना रुकने लगा और इन गोलों के आसपास की गैस और उसमें गैस के संघनन होने से धूल कण भी बने थे।
1: ये तो वैसा ही है जैसे बादल में वाष्प और धूल के कण होते हैं।
0: हाँ भाई, वैसे ही, बस बादल के केंद्र में ये नाभिकीय भट्टी यानी तारे नहीं होते।
5: और फिर क्या हुआ?
0: बस ये बादल थे, नेब्यूले जिन्हें निहारिकाएं कहते हैं। इनमें तारों के चारों ओर के धूल के कण गुरुत्वाकर्षण के कारण एक चपटी तश्तरी की आकृति में थे। हाँ, ये कण एक दूसरे से जुड़ने लगे क्योंकि वो लगातार एक दूसरे के संपर्क में आ रहे थे। और जब ये धूल के कण तश्तरी के मध्य तल की ओर गिरते थे तो कभी चिपक जाते थे, कभी कभार टूट भी जाते थे। हाँ, पर कुल मिलाकर तो इनका आकार बढ़ता रहा ना।
1: अंकल, ये सब कितनी देर चला?
0: सृष्टि, शायद बादल वाली परिस्थितियां 1,00,000 साल चली होंगी, पर तुम्हें याद रखना है कि ब्रह्मांड को बने करीब 10 अरब साल हो चुके हैं, यानी सौर मंडल का जन्म करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ।
1: ये कैसे पता चला?
0: भाई बड़ा टेढ़ा सवाल है, क्योंकि तब कोई घड़ी तो छोड़ी नहीं गई थी।
1: ये जवाब तो गोलमोल है अंकल।
5: अरे दीदी, शर्माती क्यों हो? ये क्यों नहीं कहती कि ये तो कोई जवाब ही नहीं हुआ?
3: लिया भाई।
0: बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा देखो, कभी तुमने टूटते तारे देखे?
5: हाँ हाँ अंकल, मैंने देखे हैं।
0: शायद तुम्हें पता नहीं होगा सृष्टि की ये तारे नहीं होते बल्कि ठोस कण होते हैं। ये धूमकेतु से आए भी हो सकते हैं, मंगल या चंद्रमा से आए टुकड़े भी हो सकते हैं, और मंगल तथा बृहस्पति के बीच के लघु ग्रहों के टुकड़े भी।
5: अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था।
0: पर ये सच है। और देखो, जब ऐसा कोई बड़ा टुकड़ा पृथ्वी पर गिरता है तो उसे उल्का पिंड या मेटियोराइट कहते हैं।
5: पर अंकल, ये भी मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ ना।
0: बिल्कुल नहीं हुआ।
5: तो
0: इस तरह के उल्का पिंडों का जब रेडियो एक्टिविटी के सिद्धांतों से आयु निर्धारण किया गया तो पता चला कि ये 4.5 अरब साल पुराने तक थे।
5: पर ये तो उल्का पिंडों की आयु हुई।
0: हाँ सृष्टि, मगर इन उल्का पिंडों के कुछ खनिज के सालों में सूर्य से निकले ऊर्जावान कणों के प्रभाव देखने को मिले। इसका मतलब सृष्टि, ये सूरज के बनने के बाद बने।
5: पर हो सकता है कि ये अरबों साल बाद बने हो?
0: नहीं, क्योंकि कुछ उल्काओं में ऐसे समस्थानिक यानी आइसोटोप मिले जो इन खनिजों में समाये तो आयोडीन की तरह रेडियो सक्रियता के कारण बदल गए जीनॉन में।
5: इसका मतलब
0: ये सृष्टि कि आयोडीन का समस्थानिक आयोडीन 129 जिस प्रक्रिया में बना था उसके बाद अगर काफी ज्यादा यानी कुछ करोड़ साल भी बीत गए होते तो इस आयोडीन का क्षय जीनॉन में हो गया होता, और जीनॉन तो निष्क्रिय गैस है, वो उस खनिज में कैसे आती?
5: तो इसका मतलब सौर मंडल में बादल में पहले सूरज बना, फिर ग्रह और दूसरे ठोस पिंड।
4: मुझे तो बस इतना समझ में आया है कि करीब 15 अरब साल पहले ब्रह्मांड, करीब 4.5 अरब साल पहले सूरज, और लगभग तुरंत बाद ग्रह बने। अब मेरे ख्याल से मुझे चाय की जरूरत है, आपको भी क्या?
3: अब नेकी और इतनी लंबी पूछ है।
4: लीजिए
0: भाई। भाई साहब, भाभी को तो मानना पड़ेगा।
3: हाँ।
0: एक बार में ही बात का निचोड़ निकाल लिया।
3: अरे हाँ, इसीलिए तो हम परेशान रहते हैं, कोई बात छिपा ही नहीं पाते।

0: अंकल, पृथ्वी भी तो ग्रह है, वो भी इस तरह सूरज के चारों ओर की गैस और धूल के बादल से बनी।
1: जवाब दो भाई।
2: हाँ, पृथ्वी भी इसी बादल में बनी जिसमें और 8 ग्रह बने।
0: 8 नहीं, 9।
2: अरे तुम्हें बताया नहीं था कि प्लूटो अब ग्रहों की बिरादरी से बहार हो गया है, इसलिए कुल 8 ग्रह ही बचे।
0: हाँ, अखबार में पढ़ा था और विज्ञान प्रसार की ड्रीम 2047 मैगजीन में भी।
2: ड्रीम 2047 मैगजीन? अरे भाई सृष्टि, तुम तो वाकई कमाल की चीज हो।
1: मैं कह लूं?
3: बोल दूं।
1: कोई नहीं, जैसा पिता वैसी पुत्री है।
0: कमाल तो मैं हूँ अंकल, पर अगर सब ग्रह एक ही तरह बने तो उनमें इतना अंतर क्यों है
2: भाई? ये तो सूर्य प्रकाश बताएंगे।
1: हाँ भाई, ये तो मेरे भी गले नहीं उतरी। अब बृहस्पति गैस का गोला, पृथ्वी चट्टान और पानी के साथ साथ वातावरण से भी ढकी है, उधर बुध बिल्कुल पत्थर, तो शुक्र ग्रह अम्लीय गैसों से ढका।
0: यही नहीं, दूर वाले बर्फीले ग्रह भी हैं, शनि, यूरेनस और नेपच्यून भी।
2: देखो सृष्टि, दरअसल इनकी सूरज से दूरी में बहुत अंतर है। अब शुक्र सूर्य से इतना पास है कि इसकी सतह का तापमान 400 से 500 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पानी द्रव रूप में नहीं रह सकता, उबल कर भाप बन जाता है। अब भला बारिश क्या होगी, और फिर उसके वातावरण में अम्ल और अमोनिया।
0: पर बुध पर तो अम्लीय वातावरण नहीं है, यह तो सूर्य के सबसे पास है।
2: अरे बुध पर तो वातावरण ही नहीं है सृष्टि। हाँ, इतना छोटा है, करीब करीब चांद के बराबर, और उसका कमजोर गुरुत्वाकर्षण गैसों को बांध कर नहीं रख सका। सूर्य से निकलने वाली तेज कणों की आंधी ने जो हवा रही भी होगी उसको उड़ा दिया।
0: हवा नहीं, पानी नहीं, तो अंकल वहाँ रहेंगे कैसे?
1: अरे बेटा, पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन नहीं मिला है आज तक।
0: ये सच है अंकल?
2: हाँ बिल्कुल, 16 आने सच है सृष्टि। और शायद इसीलिए हमें अपने आप को धन्य समझना चाहिए।
0: हाँ अंकल, वैसे बनने में तो पृथ्वी की प्रक्रिया कोई खास नहीं थी, पर सूर्य की दूरी के कारण इतना अंतर।
2: हाँ, दूर होती तो शनि, यूरेनस, नेपच्यून जैसी ठंडी और बर्फीली होती, पास होती तो बुध जैसी पत्थर या शुक्र जैसी जहरीली हवा से ढकी होती।
0: और मंगल पर?
2: अरे मंगल ग्रह का तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस कम रहता है।
0: अच्छा,
1: अब पर नवनीत, वहाँ पहले तो पानी था।
2: हाँ, ऐसे प्रमाण मिले हैं सूर्य प्रकाश कि वहाँ पहले पानी बहता था।
1: हाँ।
2: लेकिन आज तो नहीं है।
0: और अंकल चांद पर?
2: वहाँ भी ना द्रव्य रूप में पानी है ना हवा। कुल मिलाकर ये जो हमारी धरती है ना, अद्भुत है।
1: ये बिल्कुल सही बात।
0: धरती मेरी माता पिता आसमान।
1: अरे क्या बात है भाई, बड़े म्यूजिकल मूड में हो मानव। अरे चाय, अरे वाह वसुधा,
4: किसी खुशी में चाय हो जाए।
1: भाई ये काम तुमने बहुत बढ़िया किया वसुधा। लाओ लाओ चाय। और नवनीत तुम भी चाय लो ना।
4: पर भाई मैंने देवर जी की क्लास मिस कर दी।
2: अरे भाभी, आपके लिए स्पेशल क्लास लगा देगा आपका देवर। पर आज तो काफी देर हो गई है, क्यों सूर्य प्रकाश?
0: अरे अभी देर का हुई है।
4: बस बस, कल सुबह उठते समय 10 बहाने बनाओगे।
0: नहीं माना, मैं कोई बहाने नहीं बनाऊंगा।
2: अरे
3: बिस्कुट भी लीजिए ना।
2: हाँ। अच्छा सृष्टि मानव, अब ये बताओ कि कुछ समझ आया तुम लोगों को कि ये हमारा सौर मंडल कैसे बना और पृथ्वी?
0: हाँ हाँ अंकल, वो तो ठीक है, पर पृथ्वी जब इतने कणों के मिलन से बनी है तो आज इसमें कोर क्यों है? सतह पर क्रस्ट या परपटी क्यों है?
2: अरे वाह,
0: बीच में मैंटल क्यों है?
2: भाभी, आपके बच्चों को तो काफी कुछ पता है।
1: मेरे बच्चों को बहुत पता है।
4: ये तो ये बात है कि जो भी इन्हें बता दो याद रहता है।
2: कुछ भी कहें भाभी आप, लेकिन सृष्टि का जो सवाल है बहुत अच्छा। देखो सृष्टि, पृथ्वी का उद्भव तो हमने समझा, पर 4.5 अरब साल पहले बनने के बाद इसका विकास कैसे हुआ, ये एक अलग कहानी।
1: भाई नवनीत
2: जी,
1: और तो सब ठीक है, ये बताओ कि ये भौतिकी है, खगोल विज्ञान है या भू विज्ञान है?
2: देखो सूर्य प्रकाश, प्रकृति ऐसा कोई भेद नहीं करती। अब देखिए, पृथ्वी की आयु का पता नहीं चलता अगर उल्काओं का अध्ययन नहीं होता।
1: हाँ,
0: तो पृथ्वी के विकास को समझने के लिए हमें ये सब विषय पढ़ने पड़ेंगे।
2: अरे नहीं सृष्टि, उसमें तो वनस्पति की भी बहुत बड़ी भूमिका है। देखो, अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो शायद हमारे वातावरण में ऑक्सीजन नहीं होती। तो क्या वनस्पति विज्ञान भी पढ़ोगे?
0: अरे अंकल, पढ़ने को तो हम जीव विज्ञान भी पढ़ लेंगे।
2: नहीं माना, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि सभी विषयों की थोड़ी बहुत जानकारी होना पृथ्वी के विकास को समझने में हमारी मदद करती है।
0: तो अंकल, पृथ्वी के विकास के बारे में भी तो कुछ बताओ।
2: बोलो भाई, तुम लोगों को जानना है पृथ्वी के विकास के बारे में?
0: बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ।
4: हाँ चलिए, अच्छा है तो फिर आज टीवी बंद रहेगा। क्यों मानव सृष्टि बंद रहेगा?
1: पता है, ग्रुको मार्क्स ने कहा था कि टेलीविजन ज्ञान पाने के लिए सबसे अच्छी चीज है, इसलिए जैसे ही कोई उसे ऑन करता है मैं दूसरे कमरे में जाकर किताब पढ़ने लगता हूँ।
2: अरे भाई चलो भाई, अगर सब चाहते हैं तो फिर पृथ्वी की ही कुछ बात कर लें।
1: हाँ कर लो।
2: देखो ध्यान से सुनना बच्चों, पृथ्वी बनी करीब 4.5 अरब वर्षों पहले। उस समय तो इसका तापमान बहुत ज्यादा था।
0: अच्छा?
2: हाँ, 1.5 से 2000 डिग्री सेल्सियस के बीच।
0: इतनी गर्मी कहाँ से आई अंकल?
2: कई स्रोत थे सृष्टि। एक तो पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया ही कुछ ऐसी थी। भाई पृथ्वी अलग अलग पिंडों के टकरा कर जुड़ने से बनी थी, इसलिए वहां गुरुत्व ऊर्जा इकट्ठी थी। फिर आरंभिक वर्षों में पृथ्वी पर लगातार ठोस पिंडों की कणों की बौछार हो रही थी। इनकी गतिज ऊर्जा भी पृथ्वी ही सोख रही थी।
0: अच्छा, पर अंकल आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा?
2: मानव आज ऐसा हो तो रहा है पर बहुत कम।
0: अच्छा,
2: अब देखो कभी कभी ही उल्का पिंड गिरते हैं। खैर, पृथ्वी पर ऊष्मा का एक और स्रोत था। पृथ्वी के पिघले रूप में होने के कारण भारी तत्व पृथ्वी के केंद्र की ओर इकट्ठे होने लगे थे।
0: वैसे ही जैसे पानी में तेजी से चीनी घोलने पर वो गिलास के बीचों बीच आ जाती है।
2: बिल्कुल।
1: अगर मुझे ठीक से याद है नवनीत, तो यूरेनियम थोरियम वगैरह भी भारी तत्वों में आते हैं।
2: बिल्कुल सूर्य प्रकाश, यूरेनियम ही नहीं दूसरे बहुत सारे रेडियो धर्मी तत्व भी भारी होते हैं। भाई सच तो ये है कि भारी तत्वों के कुछ समस्थानिक रेडियो सक्रिय होते हैं।
0: तो ये भी पृथ्वी के गर्म होने का कारण था, है ना?
2: हाँ बिल्कुल सृष्टि। और जब ठोस कण बनने लगे, क्योंकि भारी को ठंडी होने लगी थी, तो इस क्रिया में वो ऊष्मा निकली जो उन्हें गलाने में खर्च हुई थी।
0: पर आज के दिनों में तो केवल रेडियो विघटन वाली ऊष्मा ही महत्वपूर्ण है।
2: बिल्कुल,
1: यानी पृथ्वी से ऊष्मा खो रही है पर अंदर ऊष्मा उपज रही है।
2: हाँ कह सकते हैं। वैसे सूर्य प्रकाश, ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना नष्ट। वो कहते हैं ना, ना जायते ना म्रियते।
1: एक्सक्यूज मी, एक मिनट, वो तो आत्मा के लिए है।
2: तो ऊर्जा भी वैसी ही है भाई। देखो, पदार्थ से ऊर्जा बन सकती है, ऊर्जा से पदार्थ, ऊर्जा एक रूप से दूसरे में बदल सकती है, लेकिन ये नष्ट नहीं हो सकती।
1: ये बात तो खैर है।
0: अंकल, आप रेडियो धर्मी विघटन के बारे में बात कर रहे थे ना?
1: आ गई भाई।
2: अरे सृष्टि, उसके बारे में भी एक बड़ा ही रोचक किस्सा है।
0: किस्सा? फिर तो मैं भी सुनूंगा। हाँ हाँ, किस्सा तो बड़े ध्यान से सुनेगा ये मानव।
4: चलो चलो चलो, मानव को क्रिकेट और टीवी के अलावा भी किसी और चीज में मजा तो आ रहा है ना। कीप इट अप मानव।
2: तो सुनो बच्चों ध्यान से, इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष थे लॉर्ड केल्विन। अरे वही केल्विन जिनके नाम पर तापमान का यानी टेम्परेचर का स्केल है।
4: लॉर्ड केल्विन तो भौतिक विद थे ना?
2: हाँ भाभी, और उन्होंने गणना कर बताया कि पृथ्वी की आयु 4 करोड़ साल से अधिक नहीं हो सकती।
0: पर अंकल, आपने बताया था कि पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष है।
2: अरे सृष्टि, ये तो बाद में पता चला।
0: अच्छा, लेकिन अंकल, लॉर्ड केल्विन की गणना क्या थी?
2: देखो मानव, ये गणना पृथ्वी को आरंभिक उच्च तापमान से वर्तमान तापमान तक ठंडा होने में लगे समय पर आधारित थी।
1: भाई ये तो आसान और सीधी सादी बात लगती है।
2: अरे भाई सूर्य प्रकाश, सीधी बात तब होती जब आरंभ से अब तक पृथ्वी केवल ठंडी ही होती, पर पृथ्वी की कोर में रेडियो धर्मिता के कारण ऊष्मा भी पैदा हो रही है।
0: तो क्या इतने बड़े विद्वान को ये बात नहीं पता थी?
2: हाँ। नई सृष्टि, उस समय तक किसी ने रेडियो धर्मिता का नाम भी नहीं सुना था। ये बात और है कि आज तो हाई स्कूल का बच्चा भी रेडियो धर्मिता के बारे में बड़ी अच्छी तरह से जानता है।
1: है ना सृष्टि, जानती हो ना?
0: बिल्कुल जानती हूँ।
5: तो अंकल, रेडियो धर्मिता की खोज कब हुई थी?
2: मानव रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल और रोंजन ने संयुक्त रूप से 1895 और 96 के आसपास की।
4: अगर रेडियो धर्मिता की खोज लॉर्ड केल्विन के समय हो जाती तो उसकी पृथ्वी की आयु संबंधी गणना गलत नहीं होती।
5: लेकिन अंकल, आप तो कोई किस्सा सुनाने वाले थे ना?
0: अरे बुद्धू, यही तो किस्सा था।
5: मेरा मजाक उड़ाते हो।
1: अरे नहीं नहीं नहीं बेटा नहीं।
2: अरे नहीं मानव भाई, कोई किसी का मजाक कैसे उड़ा सकता है? देखो बेटा, होता यह है कि हम छोटी छोटी बातें अपने दिल से लगा लेते हैं।
4: और इतनी विशाल पृथ्वी की कहानी सुनकर हमें अब अपना मन भी इस धरती की तरह विशाल रखना चाहिए।
2: बिल्कुल
4: बेटा।
5: हाँ, अब मैं बिल्कुल समझ गया दीदी। अब आप मेरे सारे कलर ले सकती हो।
0: अरे वाह, मानव तो सच में विशाल दिल का हो गया।
5: हाँ।

0: अरे दीदी, जब धरती ने इतने रंग बिखेरे हैं, तो इन कलरों की क्या कीमत?
1: सौर मंडल कैसे बना? अभी आप विज्ञान प्रसार के प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की आलेख एवं अनुसंधान चंद्रमोहन नौटियाल का था। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतकर्ता राजीव दुबे और प्रस्तुति सहायक संदीप छिकारा। इस कड़ी में भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, रजनीश शर्मा, लालिमा अनेजा, रिधिमा बग्गा, मेघा शर्मा और समीर ठुकराल।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

गर्भ के चौथे महीने से प्रसव के 6 महीने बाद तक हर माँ ले रोजाना संतुलित भोजन के साथ आयरन की एक लाल गोली। एनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
3: उबालोगे तो झाग लगेगी और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नाम तो सुना ही होगा।
3: राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई, सुनते हैं आरजे साइमा को खुशबू के साथ।
4: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद हैं, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
5: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, गम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करे और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
4: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं?
5: हाँ, ये बहुत खौफनाक है और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुटलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
4: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज अ इंस्पिरेशन देखता है और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
5: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है। एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे हमारे अंदर ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है। वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
4: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर, कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे, बड़े नाम, कहानियां बदल जाती है लेकिन कम्युनिटी, छोटा सा प्रदेश, उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
5: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म ले, बिकॉज रेडियो इंपैक्ट का मीडियम होना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलिवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
3: भाई बिल्कुल सही कहा आरजी साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलिवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है, और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुरुशादा 90.8 एफएम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सोरो शारदा 90.8 FM।
2: Hi everyone, this is Dania Joshi and you're listening to Suno Sharda 90.

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: अरे हम बोल रहे हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे हम बोल रहे
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अरे डब्बा ले आ। बेटा जल्दी आ, स्कूल को लेट हो रहा है।
2: आई पापा। क्या पापा जगह जगह थूकते रहते हो?
1: वो
2: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। पापा
3: क्या हुआ बेटिया?
4: डॉक्टर साहब,
5: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपकी ही देन है।
6: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
2: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगे नहीं।
4: वादा करता हूँ बेटिया, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा, प्रॉमिस।
5: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए, अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
7: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: महावारी के दौरान स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। महावारी के दौरान स्वच्छता के लिए आप विविध साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पैड, टैंपून, महावारी कप या साफ कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: यदि आप पैड का उपयोग करते हैं तो उसको जितना हो सके उतनी बार बदलें। दिन में कम से कम 2 से 3 बार पैड को बदलना चाहिए।
1: महावारी में सबसे अच्छा संभावित विकल्प महावारी कप है, जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है।
2: महावारी कप सैनिटरी पैड और टैंपोन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा खून की मात्रा को एकत्र कर सकते हैं।
1: महावारी कप बैक्टीरिया के संक्रमण के जोखिम को कम करता है।
2: इसका दोबारा प्रयोग भी किया जा सकता है, इसमें खर्च भी कम होता है।
1: महावारी के दौरान साफ कपड़े का भी प्रयोग किया जा सकता है। एक साफ कपड़े को मोड़कर पैंटी में रखें। प्रयोग के बाद उसे साबुन और पानी से अच्छे से साफ करके धूप में सुखाएं।
2: प्रयोग किए गए कपड़े को छूने से पहले हाथों पर दस्तानों या प्लास्टिक की थैली को हाथ में पहन लें।
1: गंदे कपड़े का 1 हिस्सा क्लोरीन और 9 हिस्सा पानी के घोल में कम से कम 20 मिनट तक भिगो कर रखें। अगर क्लोरीन नहीं है तो कम से कम साबुन के पानी में 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। पानी में साबुन की सही मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए देख लें कि पानी को घोलने और हिलाने पर उसमें बुलबुले हों।
2: हाथों पर दस्तानों या प्लास्टिक की थैली को हाथ में पहनकर गंदे कपड़े को सामान्य तरीके से साबुन और पानी से साफ करें।
1: साफ किए गए कपड़े को धूप में सुखाएं। बचे हुए साबुन के पानी को फेंकने के लिए गड्ढा खोदकर उसमें डाल दें।
2: अपने हाथों से दस्ताने या पॉलिथीन को निकाल दें और हाथों को पानी और साबुन से अच्छे से धो लें।
1: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं उरण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे यानी कि ये 5 जूस। वो कौन कौन से 5 जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए 5 हेल्दी जूस जरूर पिएं। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है, अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: महावारी एक महिला के संपूर्ण स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक कुदरती घटना है, फिर भी ये दुनिया भर में लाखों महिलाओं के लिए नियमित तौर पर और भयंकर रूप से उनके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य में रुकावट बनती है।
1: महावारी एक ऐसी घटना है जिसका सामना महिलाएं और लड़कियां मानव जाति की शुरुआत से ही करती आ रही हैं। हालांकि यही मानव जाति के लगातार अस्तित्व में बने रहने का कारण भी है। फिर भी एक महिला की महावारी के साथ बहुत ज्यादा शर्म और संकोच जैसे भाव जुड़े हुए हैं।
0: महावारी को अक्सर खून, अशुद्धता और घृणा से जोड़ा जाता है, जो कि सरासर गलत बात है। इसी कारण से महिलाएं अपनी महावारी के बारे में बात करने में संकोच महसूस करती हैं।
1: इसलिए लड़कों और लड़कियों दोनों को ही महावारी और मासिक चक्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। महावारी से संबंधित गलत अवधारणाओं या मिथकों को दूर करने में लड़के भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
0: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं, तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है, जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है, जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और type 2 diabetes के खतरे को कम करता है, जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है, जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है, जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

मेहरबा ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो सिंगर म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय आदित्य रेखाड़ी म्यूजिक लव इट मेहरबा ओनली ऑन सुरु शारदा 90.4

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, I'm Ranvijay. You are listening to Suno Sharda at 90.8 FM.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: The School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं. यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी. यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे. अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: एक तो है तूफान मेल, क्लास में सबसे आगे, खेल में रहती नंबर वन, दिमाग भी सरपट भागे। और एक है थकान मेल, थकी रहती हरदम, खेल में रहती पीछे वो, पढ़ाई में भी नंबर कम।
3: थकान मेल को अनीमिया तो नहीं? अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
2: जब से ली थकान मेल ने नियम से आयरन की गोली, चुस्ती फुर्ती आई उसमें तूफान मेल वो भी होली।
4: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई। माँ देखो, तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: हाय, मैं उरण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
2: हेलो, मैं हूं डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शन आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे, आईज पे, कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
1: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
0: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाए।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: क्या आपको बुखार आ रहा है?
2: ये बुखार डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया का हो सकता है।
1: बुखार होने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दिखाएं।
2: सिर, हाथ, पांव और पेट पर सामान्य पानी की पट्टी रखें।
1: बुखार के दौरान पानी, शिकंजी, ताजी फलों का रस और नारियल पानी जैसे तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन करें।
2: हल्के सूती कपड़े पहने और कमरे को ठंडा रखें।
1: डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा का सेवन ना करें। झोला छाप चिकित्सकों से बचें।
2: संचारी रोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर
1: 1800-180-5145 पर कॉल कर सकते हैं।
2: याद रखना, बुखार में देरी
1: पड़ेगी भारी।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा ये जानकारी जनहित में जारी।
3: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
4: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
4: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: नाम तो सुना ही होगा।
0: राम राम दोस्त राम, सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यह आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रही हैं आरजे सायमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे। पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई, सुनते हैं आरजे सायमा को खुशबू के साथ।
4: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद है, आरजे सायमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
5: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, गम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करे और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
4: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं?
5: हाँ, ये बहुत खौफनाक है और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुटलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
4: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज अ इंस्पिरेशन देखता है और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
5: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे हमारे अंदर, ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं, वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है। वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
4: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे बड़े नाम कहानियां बदल जाती है लेकिन कम्युनिटी छोटा सा प्रदेश उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
5: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म नहीं, बिकॉज रेडियो इंपैक्ट का मीडियम होना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इंपैक्ट क्रिएट कर सके। और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलेवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
0: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुरु शारदा 90.8 FM के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8 FM@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 FM।
1: Hi everyone, this is Dania Doshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM.
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: आप सब जानते हैं कि हमारे नाम में ही लोगों की आशा छुपी है, इसलिए हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि होम विजिट के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास होम विजिट में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान मौजूद हो और साथ ही ये होम विजिट फॉर्म भी हो। नमस्ते अम्मा। घर पहुंचने पर सबसे मुस्कुरा कर मिलें और वहां के वातावरण को जांच के अनुकूल बनाएं। बच्चे को छूने से पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोलें। घर वालों को भी हाथ धोने का फायदा बताएं। बच्चे की पीलिया की जांच करें और साथ ही आंख, मुंह, नाल और त्वचा की भी जांच करें। बच्चे का तापमान थर्मामीटर से मापें, कहीं बच्चे का तापमान ज्यादा या कम तो नहीं। बच्चे का वजन करें, हर विजिट के दौरान वजन में बढ़ोतरी का हिसाब रखें। माँ को स्तनपान का सही तरीका और फायदे बताएं। 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान कराने की सलाह दें। होम विजिट फॉर्म में लिखे सभी सवालों को माँ और परिवार से पूछें और जानकारी दर्ज करते हुए उचित सलाह दें। बच्चे का स्वास्थ्य अगर गड़बड़ लगे तो उसे तुरंत 102 या फिर 108 बुलाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। आखिरी में अपनी अगली होम विजिट की तारीख परिवार वालों को बताएं। अपना फोन नंबर दंपत्ति से अवश्य साझा करें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने हर होम विजिट को सफल बनाइए, क्योंकि हमारी हर विजिट से फर्क पड़ता है।
1: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित